गोपी क्या बात करती हो तुम? दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है? दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। और जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देखकर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा। ये प्रेम की
की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहाँ राधा याद करती और वहाँ द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम, मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते राधा का प्रेम, राधा का प्रेम कैसे जान पाओगे। उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे, स्वप्न में भी

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण

कृष्ण में समाई, मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाएगी।

0: ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ वर्ड हमारे कान में ऐसे आते हैं जो माइंड में स्टक हो जाते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पे तुषार है आपके साथ, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सिस्टर, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है जो बहुत कॉमन शब्द इंटरनेट के जमाने पे हम सुन रहे हैं, हीलिंग। अब हीलिंग का असली मतलब क्या है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर चलते रहते हैं, बट रियल और एक्चुअल मीनिंग आज मैं आपसे जानना चाहूंगा।
1: जी, जो मैं समझती हूँ इसमें सबसे पहले ही लगा है, मीन्स आप, उसके बाद ऑल लगा है यानी सारा। तो आप अपने आप को सारा ही बिल्कुल फ्रेश कर सके, हील मीन्स पूरा का पूरा ही अपने आप को अपने ठीक कर लिया है। तो हीलिंग जो शब्द है बहुत ज़्यादा डीप है, जिसमें आपको अपने हायर लेवल को भी हील करना है। हम नॉर्मली समझते हैं कि फिजिकल जो पार्ट है, चलो और डीप हम आज जाने लगे हैं, हम EQ तक पहुंच चुके हैं, इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें लोग इमोशंस के बारे में जागरूक हो चुके हैं और इमोशंस को हील करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी और ऊपर जाने की जरूरत है अभी हमारे समाज को, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां हम स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लेते हैं तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको टैकल करने में हम काफ़ी हद तक बहुत सशक्त हो चुके होंगे, एम्पावर्ड हो चुके होंगे। और इसीलिए हीलिंग जो वर्ड है ये बहुत डीप है, इसको सिर्फ हल्के में ना लीजिए।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर, पहले तो ये टॉपिक पे इतनी ब्रीफली हमको यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज्ञान है वो मुझे लगता है आधा अधूरा ज्ञान है, और जो आपने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हीलिंग के बारे में वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ, और जितने लिसनर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प करेगा उनकी इस हीलिंग जर्नी में आगे। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो कुछ गानों के बाद, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बाद हम अपने लिसनर्स के सामने रखेंगे, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सुबह की बेल
1: आंखों में नींद,
0: बैग में बुक्स दिमाग में स्पीड, टीचर बोले
1: नोटबुक खोलो,
0: हम बोले मैम बस 2 मिनट्स प्लीज।

0: मेरे ओपिनियन में स्ट्रेस की कोई भी मेडिसिन नहीं हो सकती। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, स्ट्रेस और एक इमोशनल पेन, ये दो टर्म्स हम अब इंटरनेट के जमाने में या गूगल सर्च के जमाने में हम बहुत सुन रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि हमने दवाई दी और स्ट्रेस दूर हो गया, या हमने दवाई दे दी तो हमारा इमोशनल पेन जो है वो दूर हो गया। बट क्या मेडिटेशन वो टूल बन सकता है जो आपके इमोशनल पेन या स्ट्रेस को हील कर सके? क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक मेरे माइंड में आया था।
1: हीलिंग की बात करें तो बिल्कुल मेडिटेशन हमें हील करता है और ये बहुत जो कहें बेस्ट टूल है हमें हील करने का, क्योंकि जब भी बात आती है हम फिजिकली तो योगा कर लेते हैं लेकिन फिजिकली हम फिट होते ही अगर किसी ने कोई बात ऐसी कह दी तो वो हमें फील हो जाती है। अब उस फीलिंग से बचने के लिए अब हमारे को कैसे हम उससे बाहर आए, तो उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट जो है वो टूल है कि हम उस समय पर अपने आप को कुछ ऐसी अफर्मेशन दे कि वो नेगेटिव जो बात मेरे पास आई है, जो मुझे फील हुई है, उसको हम छोड़ सके और अपनी हीलिंग की तरफ जाए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, एक बहन जिसको कैंसर पेशेंट रही है, उन्होंने अपने, वो बहुत अच्छी डांसर रही, तो वो जब भी बैठती थी मेडिटेशन में वो ये कहते थे कि मैं अपने कैंसर के जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, उसको मैं ऐसे देखती हूँ कि ये असुर हैं और मैं देवी हूँ और मैं इनको मार रही हूँ और ये ख़त्म हो रहे हैं। और सच में ये उसने अपने कैंसर पर जीत पाई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उसके थॉट ने काम किया, लेकिन मेडिसिन भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो थॉट थी जो उसने हील के लिए प्रोसेस किया, और वो स्पेशली मेडिटेशन के ही टाइम पर जब वो मेडिटेट करती थी तभी वो अपने आप को ये थॉट देती थी कि मैं जो हूँ वो देवी हूँ और इन जो है जम्प्स को असुरों की तरह मैं मार रही हूँ। वो उस चीज़ को विजुलाइज करती थी और जैसे जैसे विजुलाइजेशन थी टाइम कम टाइम में उसने अपने आप को हील कर लिया। तो मेडिटेशन तो बेस्ट टूल है।
0: इसका एक एग्जांपल हमने शायद स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, एक लास्ट लीफ करके एक पोइट्री होती थी कि वो एक पेशेंट था, वो बहुत बीमार हॉस्पिटल में था तो उसने होप छोड़ दी थी, तो एक पेंटर ने उसके बेडरूम के सामने वाली दीवार पे एक आर्टिफिशियल पत्ती बना दी थी, लीफ बना दी थी, और ये कहा था कि जब तक ये पत्ती झड़ेगी नहीं तुम नहीं मरो, और वो पत्ती कभी झड़ती नहीं क्योंकि वो पेंट था, तो इसी बहाने वो सरवाइव करके निकल आया।
1: बिल्कुल वही थॉट था जो थॉट ने उसको हील कर दिया।
0: वैसे तो देखिए आपका जो इमोशनल पेन है या आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से कोई चीज रिलीफ नहीं कर सकती है, बट हाँ आपको थोड़े टाइम के लिए उससे दूर मेडिटेशन ले जा सकती है, जो यहाँ पर सिस्टर्स की बात से मेरे को लगा, और अगर हम उसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए मेडिसिन का काम भी करने लग जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: रोहित ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: आज मैं एक टिपिकल ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन नेचर की बात आपसे करने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर। सिस्टर, एक हीलिंग टर्म के साथ मैंने चीज और सुनी है कि इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आके चीजें करने की आदत रखता है। तो हीलिंग के साथ भी सेम प्रोसेस होता है, जब वो बहुत बाल्टी में पानी ऊपर तक भर जाता है इमोशंस का, तब वो सोचता है कि नहीं, अब मैं हीलिंग को अपना लूं। बट तब तक क्या लेट हो चुका होता है? और ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक इंसान की लाइफ में रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए या वन टाइम में काम हो जाता है?
1: आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद ही भरे हुए हैं और हम उनके आगे ही जाके ड्रेन आउट हो रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी फुल हैं उन्हीं चीजों से जिनसे हम भरे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है पहले अपने लिए एक अच्छा बेस्ट अपना फ्रेंड बन जाए, अपने आप का खुद का दोस्त बने। और दूसरा, हमें सबको, और हम सब भारत में हैं या किसी भी आप जगह पर जाके देखें तो सब जगह पर सबसे पहले गॉड को याद किया जाता है, परमात्मा को। दूसरा हीलिंग सोर्स, हमारी बातें सुनने वाला वो परमात्मा है। हम उन दोनों को छोड़ करके हम लोगों को हम सुना रहे हैं, इसीलिए आज हम शायद हीलिंग हो ही नहीं हो रही है, हमारी हीलिंग हो ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज्यादा, जिसके पास भी जाते हैं वो अपनी सुनाना शुरू कर देता है, हम भी बड़े परेशान हैं, हम भी बड़े दुखी हैं, हम भी ऐसे हैं, तो वो चीज़ हमें और इरिटेट कर देती है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप से बातें करें, अपने आप को हील करें कि नहीं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, जो भी चीज़ें हैं मुझे वो सॉर्ट आउट करनी है। अपनी बातों को डायरी पे नोट करें, जो डायरी लिख सकते हैं वो लिखे, नहीं है तो जिसे भी आप अपने आप को इष्ट मानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसके पास जा कर के अपने मन की सारी बातें कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक सोर्स मिलता है, जो कहीं पर आपकी बात को बोलेगा भी नहीं, आपको सोल्यूशन भी उसका कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगा। वो भले खुद नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन हमें देता है। और दूसरा, अपने आप के साथ पहले पॉजिटिव हों, हम अपने लिए नेगेटिव हैं, पहले अपने अच्छे दोस्त बने, फिर हमारे से अच्छा हीलिंग और कोई नहीं कर सकता।
0: वो एक कहावत आपने सुनी है कि एक आर्ट भी तब निखर के आती है जब आर्टिस्ट उसकी प्रैक्टिस करता है, तो सेम हीलिंग है। हीलिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे आप एक दिन में हील हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: अब जो बात होने वाली है ना, उसे आप बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं कर सकते हैं, वरना तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया से मैं अब यही जानना चाहूंगा। सिस्टर, आप हीलिंग प्रोसेस में या मेडिटेशन प्रोसेस में एक लंबे समय से हैं, तो क्या वो प्रो टिप्स आप अपनी तरफ से आज हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी उनके हीलिंग जर्नी के लिए या उनकी मेडिटेशन जर्नी के लिए? अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं या वो स्टार्ट कर चुके हैं बट वो कहीं फंस जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं, तो उन्हें क्या ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाए?
1: बहुत अच्छा ये स्टेप तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज कहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा हम भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते भी जब हम बीमार होंगे तो क्या करेंगे? फिर रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा ना। अगर हमें रुकना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉज देना जरूरी है। और हर एक चीज़ के लिए, जैसे कोई भी बीमारी को हील करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर दो चीज़ देते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा आपकी कोई ना कोई परहेज बताते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो सेम हमारे अगर माइंड को हमें हील करना है और बहुत तेज़ गति से भागना है, तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वो अवॉइड क्या करना है? सिर्फ अपने नेगेटिव थाट्स को। और किन चीज़ों को लेके आना है? तो पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव कुछ भी। भागते भागते भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तो लोग मेडिटेशन को ये सोचते हैं कि हमें शायद कहीं जाके एकांत में बैठना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें भागना पड़ेगा या हमें छोड़ना पड़ेगा या हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को कुछ ऐसे थॉट देने हैं जो कि हमें हील कर सके। इस चीज़ को सभी लिसनर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सब लिसनर्स सुबह उठते ही अपने लिए कुछ 5 अच्छी बातें बोलें। वो है कि आप एक पावरफुल सोल है, आप वो कर सकते हैं, पहला थॉट। दूसरा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये थॉट मुझे उस काम को करने के लिए एक इंस्पिरेशन देते हैं। मेरे आसपास सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम इस थॉट को लेकर के आते हैं, आप पूरे दिन में, आपको पता है चैलेंजेस आने हैं, तो आपको थॉट सुबह क्या देना है? आज जो भी चैलेंज आएंगे, मुझ में भगवान ने इतनी शक्ति भरी है, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ थॉट हम सब अपनी लाइफ में, किसी के सामने एग्जाम है और उसको एग्जाम पास आउट करना है, बच्चा है कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको माइंड में सुबह उठ के कि मैं जो भी आज एग्जाम आएगा मेरे को वो सारा आता है, बहुत इजी आएगा, आप मन को थॉट दें। तो ऐसे कुछ थॉट हम दें तो आप देखें अपनी लाइफ को आप कितना स्मूथ बना लेते हैं।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये टिप देने के लिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखने के लिए। और आज ये टॉपिक जो हीलिंग था, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में मिलेगा। बट कल हम एक और नए टॉपिक के साथ सुबह 6 बजे यहीं पर 89.6 रेडियो महारानी पर आपका भी वेट करेंगे कुछ हटके।

जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पति जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई तो करी रिस्टार्ट।

0: नेपाल में जैसे ही फ्लड्स आए उसके बाद इंडिया में भी काफी सारी नदियों में पानी उफान पर आ गया, और फिर उसके बाद रेडियो पर मेरे साथ कोई और आ गया,
1: गौरव तुषार।
2: ये कौन सी बात हुई, रेडियो में उसके बाद कोई और आ गया? भाई मैं उसके बाद नहीं, मैं उससे पहले आ गया था।
0: तो मतलब स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं और तुषार आ चुके हैं आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब?
2: ये सब तो बढ़िया है, बट फिलहाल जो बारिश का लेवल है, बारिश की वजह से वाटर लेवल है स्पेशली, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं, अगर हम माउंटेन रीजन की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी पानी का लेवल बहुत है, हिमाचल में भी बहुत है, और उसके बाद अगर हम माउंटेन से प्लेन्स में आ जाते हैं तो इस बार यूपी में बहुत लेवल पे बारिश हो रही है।
0: बारिश भी हो रही है, उसी के साथ साथ नेपाल से जो पानी आया था, बाढ़ का पानी, वो बिहार में यूपी में बहुत ज्यादा आया। गंडक नदी पे जो डैम बना हुआ है उसने भी काफी ज्यादा कंट्रोल किया, और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की तूने बात करी ना अभी, तो उत्तराखंड में मेरे रिलेटिव्स रहती हैं, उनका बताना था कि अभी इस हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, और इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई थी।
2: स्कूल की छुट्टी तो मेरे को लगता है थोड़ी सी बारिश में भी दे देते हैं, आप क्या नहीं देते?
0: नहीं देखो, उत्तराखंड में दे देते हैं, इधर फरीदाबाद में तो नहीं देते, क्योंकि फरीदाबाद में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पानी भर जाएगा, वहां तो पहाड़ नीचे आ जाते हैं।
2: नहीं, यूपी में भी दे देते थे।
0: चलिए चलिए, यूपी में भी दे देते थे। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर हम लोग और भी बातें करेंगे छुट्टी के बारे में।
2: अच्छा, हमें लगा कि आप कह रहे हो रेडियो महारानी में भी छुट्टी, हमने कहा है
0: तो छुट्टी हम लोगों को नसीब कहाँ है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव, आपके साथ मेरे साथ है
2: तुषार,
0: एंड आप सुन रहे हैं
2: रेडियो के जीटी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: गौरव तुषार
1: रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
3: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
4: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
5: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: जैसे ही लंबा वाला हफ्ता आता है हम लोग सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मगर फिर उसके बाद हमारे ऑफिस में हमारे जो बॉस होते हैं वो कहते हैं तो जाके तो दिखा, हम भी तुझे बताएंगे। क्या बताएंगे ये समझ नहीं आता।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: कहीं ना जाने की वजह से आपके दिमाग में सदमा आ गया है क्या?
0: बहुत ज्यादा।
2: आपने ये क्या बोला, लंबा वाला हफ्ता आता है? हफ्ता 7 दिन का ही होता है, लंबा वाला हफ्ता नहीं होता, लॉन्ग वीकेंड आता है भैया।
0: देखो यही चीज होती है स्ट्रेस, इसे कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन कुछ ऐसा है कि लॉन्ग वीकेंड को मैं लंबा वाला हफ्ता बोल चुका हूँ, हफ्ते की छुट्टी बोलना चाहता था।
2: हाँ।
0: और ये वाला हफ्ता बहुत लंबा छुट्टी थी, बट मैं तो कहीं नहीं जा पाया।
2: मैं भी नहीं गया, मैं भी आपके साथ यही भरू।
0: और हम लोग आप लोगों के साथ आए हैं रेडियो की जीटी लेकर, और इसी के साथ साथ लॉन्ग वीकेंड पे मेरे दोस्त घूमने गए हैं। ये रो रहा है बेचारा। मैं बताता हूँ, देखो स्टेटस पे लगाया था लोगों ने घूमने गए हैं, कहीं कोई मनाली गया है, कोई कहीं गया है, और कुछ लोग जयपुर साइड भी गए हैं। वैसे हम लोग भी जयपुर
2: सबसे सेफ वही हैं।
0: मैं जा सकते हैं जयपुर आज, पता कैसे?
2: कैसे
0: शो करेंगे यहाँ से। हाँ। और तुरंत केएमपी पकड़ेंगे। हाँ। मुंबई एक्सप्रेस पे 4 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे हम लोग,
2: फिर वापस भी तो आना 4 घंटे लगा के, कल भी तो है।
0: हाँ कल भी आना है, तो फिर हम लोग कर सकते हैं। चलिए खैर, इसी के साथ साथ मंडे टू फ्राइडे हम लोग आप सभी के साथ आते हैं, बट ये जो लॉन्ग वीकेंड वाली बात आती है ना, तो जितने भी लोग कॉर्पोरेट में हैं, वो शायद इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा नीड ऑफ द आर है, क्योंकि सबको चाहिए यार छुट्टी।
2: सितंबर में एक लॉन्ग वीकेंड और है।
0: कैसे?
2: 14 सितंबर वाला गणेश चतुर्थी वाला।
0: गणेश चतुर्थी वाला तो है, बट उसमें भी छुट्टी बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। आई डोंट थिंक सो, हम लोगों
2: हर एक को छुट्टी नसीब नहीं होती लक्ष्मण,
0: हर किसी को नहीं मिलता यहाँ छुट्टी जिंदगी में। तो मैं जिंदगी में छुट्टी मिले ना मिले, मगर गाने जरूर मिलेंगे आप सभी को रेडियो महारानी पर। सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी पर, रेडियो के
2: जीडी को।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: गौरव तुषार
1: रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
4: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: गौरव तुषार रेडियो केजीपी जहां
1: हर पल फुल ऑन धमाल। ना हुआ है ना होगा ना ये होने देंगे भैया, ये इनको हमसे क्या दुश्मनी है मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
2: किसको?
1: YouTube वालों को।
2: YouTube वालों को यही दुश्मनी है कि वो नहीं चाहते कि हर कोई ऐरा गैरा नथु गैरा कमा ले।
1: मैं ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं हूँ, कंटेंट अच्छा है। जैसे ही मैं शुरू करने की सोचता हूँ ये अपनी पॉलिसी बदल देते हैं।
2: मैंने तो शुरू कर दिया था तब पॉलिसी बदली थी,
1: तो वो इसीलिए बदल दी।
2: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। हम लोग YouTube के मोनेटाइजेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ है चेंज
1: भैया? 4000 वॉच आवर्स थे, हमने सोचा था जी जान लगा के एक साल में तो पूरे कर ही लेंगे। उसने कहा नहीं डबल करो।
2: डबल करो मतलब अब 8000 वॉच आवर्स हो चुके हैं। और जहां पर मैं अभी अपनी बात कर रहा था कि मैंने स्टार्ट भी कर दिया था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, उस टाइम हुआ करता था कि 10000 व्यूज लेकर आ जाओ मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगी। मेरे हो गए थे 8000 व्यूज और मेरी अगली वीडियो डालते ही मुझे पक्का विश्वास था कि दो वीडियोस और डालूंगा और मेरे 10000 व्यूज हो जाएंगे। बट नहीं, यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज करके 4000 वॉच आवर्स कर दिया था। और अब जैसे ही मेरे फिर से 4000 होने वाले थे तो फिर से चेंज कर दिया है। और ये कब से चेंज होने वाला है?
1: एक बात बताओ, आपके 10000 हो गए थे, 4000 की पॉलिसी थी।
2: अरे वॉचर्स और व्यूज में फर्क होता है ना ब्रो।
1: अच्छा तो ये क्लियर हम बता देते हैं कि वॉचर्स और व्यूज अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों को एक साथ ना मिलाइए।
2: जी कितने घंटे आपकी वीडियोस देखी गई है? और मैं एक सिंपल सी एक टॉपिक पे बात करता हूँ कि आप एक वीडियो बनाइए, 5 मिनट की आपकी वीडियो है, अगर उसमें 1,00,000 व्यूज भी आ गए ना, आपके 4000 वॉचर्स तो यूं ही कम्प्लीट हो जाएंगे।
1: आप 4000 नहीं चाहिए लल्ला, 8000
2: 2,00,000 व्यूज हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक वीडियो वायरल होने की देरी है। आपकी जो भी वीडियो हिट हुई उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे।
1: मैं सोच रहा हूँ दूसरी ऐप पे स्विच मार लूंगा।
2: बिल्कुल, एक नई ऐप आ रही है उसके बारे में करेंगे बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर सुनते जाइए रेडियो के जीटी को।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: गौरव तुषार
1: रेडियो के जीपी जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
3: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
4: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
3: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
5: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: हम लोगों को जिंदगी में अक्सर पॉजिटिव रहना चाहिए, बस एक चीज को छोड़कर। जब भी आप लोग कभी भी ब्लड टेस्ट कराते ना, उसमें कुछ चीज पॉजिटिव ना आए।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: क्यों ना है पॉजिटिव भाई, ब्लड में पॉजिटिव आना चाहिए। मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है।
0: ओ पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है,
2: मेरा बी पॉजिटिव है।
0: मेरा भी बी पॉजिटिव है, और इसीलिए हम लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। देखो, ब्लड रिपोर्ट में जब मान लेते हैं हम लोग किसी गलत बीमारी के बारे में टेस्ट करा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, उसमें ये कहना चाहता था।
2: अच्छा, मैं दिन में 11 बार एक चीज सुबह उठते ही रिपीट करता हूं।
0: क्या?
2: जो मैं मैनिफेस्ट करता हूं।
0: दिन में 11 बार सुबह उठते ही रिपीट करता हूं। इसका कोई लॉजिक बना?
2: कोई लॉजिक है इस बात का? हाँ बिल्कुल है। दिन में सुबह उठते ही 11 बार?
0: नहीं नहीं, तो दिन में 11 बार सुबह उठते ही, तो इसका कोई लॉजिक तो नहीं है। बट हाँ, एक और चीज, मैं मैनिफेस्टेशन की बात करी है तुषार ने, तो अक्सर हम लोगों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। जैसे ही सुबह सुबह आप लोग उठो, आप लोगों को अपने आप से बोलना है कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं पापा हूँ दुनिया का पापा।
2: अच्छा, ये सब करना होता है? मैंने तो मैनिफेस्ट करा था कि मैं कल सुबह उठूंगा, शाहरुख खान मेरे लिए चाय बना रहे हैं।
0: ये तो नहीं मिलेगा तुझे, बट हाँ, मैनिफेस्ट आपको करना है कि हाँ, मैं जो काम पे हाथ डालूंगा वो चीज मैं जीत के जरूर लाऊंगा।
2: अच्छा, मुझे लगा मैं जिस काम में हाथ डालूंगा वो खराब हो जाएगी।
0: नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है अपने बारे में, मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि कहते हैं ना कि 24 घंटे में हमारे जुबान पर कब सरस्वती माता विराजमान हो हमें भी नहीं पता,
2: उसी एक मिनट में होती है भाई।
0: और हम लोग जब अच्छी अच्छी बातें बोले तो अच्छी अच्छी चीजें ही हमारे साथ घटेगी। और एक और चीज होती है कि यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहा है।
2: हाँ बिल्कुल सुन रहा है। यूनिवर्स के कान होते हैं, दीवारों के नहीं होते, यूनिवर्स के जरूर होते हैं, लेकिन वो जो सुनता है वो हम पे आके वापस अप्लाई करके दिखा देता है।
0: बिल्कुल, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही पॉजिटिव चेंज आए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर गाना भी अच्छा वाला चलाऊंगा, सुनिए इस गाने को। रेडियो महारानी पर मैं हूँ गौरव, और
2: मैं हूँ तुषार, और शो चल रहा है रेडियो के
0: जी टी।

Dolls, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं बता के तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो।

0: कभी कभी किसी मूवी का ट्रेलर ऐसा आता है कि उस ट्रेलर को पूरी तरह से देखो, समझो और पूरा दिमाग लगाओ, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। और शायद ऐसा ही ट्रेलर है हैवान का।
1: गौरव तुषार, रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: क्यों है, कहां से आता है, ये क्यों किया जाता है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। आप समझने की बात कर रहे हो?
0: बिल्कुल समझ आ रहा हूँ मैं तेरे को। अभी हैवान नाम की मूवी है जो कि 11 सितंबर को रिलीज होने जा रही है और उसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे जो कि अक्की के फैंस हैं, क्योंकि
2: फैंस कर रहे हैं, फैंस इंतजार कर रहे हैं,
0: फैंस करते हैं, फैंस ऐसे ही होते हैं।
2: पर अक्की उसमें नेगेटिव रोल में है
0: ऐसा कहा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, बोलता रहूं, ट्रेलर से कुछ समझ नहीं आया। और इसमें उनके साथ है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
2: मैं उनको देखना चाहता हूं सैफ अली खान को।
0: क्यों?
2: इसलिए क्योंकि
0: वो तुझे नहीं देख पाएंगे।
2: नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी एक नेगेटिव रोल और करा था थोड़े टाइम पहले।
0: किसमें?
2: वो उस पे बैठ के आते हैं, पंछी पे बैठ के चले आ रहे थे।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदि पुरुष की बात कर रहा है।
2: अगर वैसा ही नहीं कोई रोल वो कर रहे हैं।
0: खैर अभी बता दूं आप सभी को, जो हमारे सैफ अली खान है वो एक नेगेटिव रोल में नहीं है, वो एक ब्लाइंड किरदार निभा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ट्विस्ट ये होगा कि सैफ अली खान ब्लाइंड होंगी नहीं।
2: मेरे को पता नहीं क्यों आपके ट्विस्ट बोलते एक गाना याद आ गया, सैफ अली खान का कैन वी ट्विस्ट, कैन वी ट्विस्ट।
0: हाँ वो ट्विस्ट मुझे याद है, बट देख मूवी का ट्रेलर से समझ आना चाहिए कुछ भी चीज है। प्रियदर्शन की मूवी
2: वो समझाने के लिए नहीं कर रहे थे ट्रेलर, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं कि वो कंफ्यूजन के लिए मूवी देखें आप।
0: क्यूरियोसिटी के लिए
2: नहीं, वो कंफ्यूजन के लिए।
0: हाँ कि अंदर से क्यूरियोसिटी होगी मुझे कि होगा क्या, होगा क्या, और मैं मूवी देखने चले जाऊँ, है ना। नहीं देखूंगा मैं मूवी ऐसी भाई जिसमें ट्रेलर में कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर आप लोग बताइए आप लोगों को ये मूवी का ट्रेलर कैसा लगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए, हमारे रिकमेंडेशन पे देखिए। हैवान है इस मूवी का नाम और अक्षय कुमार एंड साथ में उनके साथ है सैफ अली खान।
2: सब टाइटल में एक चीज और लिख देते, बूझो तो जानो।
0: हाँ बूझो तो जानो, मतलब अगर कुछ समझ आ रहा है तो हमें भी बता देना। नंबर है हमारा 9654896896। अभी फिलहाल आप सभी के लिए चला रहे हैं कुछ गाने, अब वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी। मैं हूँ रेडियो का गौरव और मेरे साथ है
2: रेडियो का तुषार
0: एंड आप सुन रहे हैं
2: रेडियो के जीटी।

0: गौरव तुषार रेडियो के जीती जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
1: ये भाई दर्द देख के चलो।
2: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
2: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: जब भी मैं ऑफिस आता हूँ मैं सिर्फ एक चीज का ध्यान रखता हूँ और वो ये है कि मैं अपना लंच लेके जा रहा हूँ या नहीं लेके जा रहा। और दूसरी चीज जो मैं ध्यान रखता हूँ वो ये है कि क्या मैंने परफ्यूम लगाया है या फिर नहीं लगाया।
1: गौरव तुषार,
2: झूठ झूठ झूठ बोलता है रे तू। डीओ तक तो मैं मान सकता था, बट ये लंच वाला झूठ क्यों बोला? लंच तो लेके भी नहीं आते हो।
0: लंच लेकर आता हूँ, कभी कभार लेकर आता हूँ, वो अलग बात है। ये मैंने नहीं सफाई किया।
2: पूरा पूरा क्लियर करा करो। और रेडियो महारानी पर तुषार और गौरव यहाँ पर आपके साथ हैं। और ये जो ऑफिस कल्चर वाली बात है ना, ये चाइना से सीखिए थोड़ा।
0: क्यों, ऐसा क्या किया चाइना?
2: चाइना की जितनी फीमेल्स हैं उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली है कि ऑफिस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, जिस वजह से हमारे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, जिस वजह से हमारी चीज हो रही है, हम दिन भर स्क्रीन देख रहे हैं, हम दिन भर ये देख रहे हैं। घर में हमारे पास होता है कम टाइम, वहां अगर हम रूटीन फॉलो भी कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ जा रहा है?
0: ऑफिस में।
2: तो हम वहां रूटीन फॉलो करेंगे।
0: क्या
2: उन्होंने कहा? हम सनग्लासेस लगाएंगे, स्क्रीन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो, हम हैट लगा के बैठेंगे ताकि एयर या जो आसपास का एटमॉस्फेयर वो नहीं, हम फेस मास्क अप्लाई करके काम करेंगे। उसमें आपको क्या दिक्कत है हमारे चेहरे पे मास्क लगा रहेगा? तो
0: भाई ये तो मतलब स्पाई बन के काम कर रहे हैं, टोपी भी लगा ली, चश्मा भी लगा लिया और मास्क भी लगा लिया।
2: वैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वैसे भी चाइनीज लोग एक जैसे दिखते हैं, मास्क लगा लिया बॉस को ही नहीं पता चल रहा कौन सा एम्प्लॉई आया है कौन सा नहीं। मास्क बंक करने का कितना बढ़िया तरीका है।
0: बढ़िया तो तरीका, बट देखो मास्क बंक नहीं हो सकता। एक सिंगल पर्सन बंक करेगा तो पता लग जाएगा। कल ऑफिस में बॉस पूछेगा तुम क्यों नहीं आए थे, फिर वो क्या बोलेगा? मैं तो आया था सर। वो नहीं आई होगी।
2: हाँ मास्क लगाया था मैं तो, वो
0: मास्क लगाया था और क्या। चलिए ये तो होगी चाइना की बात, बट इंडिया में ऐसा क्या चीज है जो वर्क कल्चर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में?
2: बहुत शॉर्ट में बताऊंगा तो कुछ भी नहीं है ऐसा।
0: ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को बस ये है कि इंडिया में हर ऑफिस में, चाहे फिर वो लाला कंपनी हो या फिर कॉर्पोरेट हो, खाना अलाउड होना चाहिए। मतलब खाना खुद से ही बना के देना चाहिए उन्हें, घर से नहीं लाना चाहिए हमें। क्या हो गया?
2: मैं सोच रहा हूँ कि आप और कुछ आगे इमेजिन करके बोलो, कुछ और चीजें बताओ।
0: अभी सारी
2: सैलरी मिल रही है टाइम पे कि नहीं?
0: बिल्कुल मिल रही है अभी सारी इमेजिनेशन।
2: वो भी जो पैसा है वो आपकी सैलरी से कटने लगेगा, ये आइडिया देना देना कहीं।
0: चलिए ठीक है, हम लोग इस बारे में बहस करते हैं और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना आदित्य भारद्वाज की आवाज में। बाय।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: ओ,

0: कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, अगर कोई जा रहा है तो चाय लेकर आ जाए। तुषार जाके चाय ले आइए यार थोड़ी सी।
1: ये कौन सी लाइन थी, कोई जाए तो ले आए नहीं है, कोई चाय तो ले आए, बोलो भैया।
0: बिल्कुल
2: गौरव तुषार, रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
0: मैं इसलिए बोल रहा था कोई जाए तो ले आए क्योंकि गाने से मैच कर रहा था, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआए पाए, मैं चाय पीना चाहता हूँ।
1: सजन की गली बोलता है वैसे वो।
0: मैं चाय पीना चाहता हूँ,
1: चाय की गली बोल देते हैं हम लोग।
0: हाँ ये भी ठीक है।
1: वैसे ये चाय की चर्चा आप कर रहे हो तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और एक चीज मेरे को दिखाई दी, नो मैटर इफ यू आर लेबर और यू आर अ कॉर्पोरेट लेबर, योर ब्रेन ओनली स्टार्ट फंक्शनिंग व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी।
0: बिल्कुल, इसी के साथ साथ ब्रेन क्या पेट भी काम करना शुरू कर देता है जब हम लोग चाय पीते सुबह सुबह उठते ही, समझ रहा है।
1: देखो गुड़गुड़ वाली हरकतें कोई बात नहीं करेगा,
0: बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, बट ये जो चाय है ना, मुझे ऐसा लगता है देखो हमारे हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड में ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि बच्चे को तो नहीं पीने देते, बट धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है ना तो पेरेंट्स खुद पूछने लग जाते हैं चाय पिएगा। और मेरी मम्मी तो बिल्कुल कमाल कर देती है, कभी कभार गर्मियों में तो नहीं बोलती है ऐसा, सर्दियों में ज़रूर बोलती है। एक दिन मैं ऑफिस से थका रहा घर पहुंचा शाम को, एंड उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैंने पूछा मम्मी घर में कुछ बना, मम्मी कह रही नहीं चाय पिएगा, मैंने कहा हाँ पीऊँगा, कहते मेरे लिए बना दियो। ये कौन सा लॉजिक था यार, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं सोच रहा था चाय के साथ बिस्किट खा लूंगा, बट यहाँ पर उल्टा पेच क्या पैतरा मुझ पे ही चल दिया।
1: मैं एक चीज और बताऊं, एक हैबिट हम अपनी लाइफ में और अगर ले आएंगे ना तो वो चाय पीने के मजे बढ़ जाएंगे।
0: बताओ,
1: जो चाय बना रहा है ना, जब भी वो चाय दे उसे थैंक यू बोलना शुरू कर। चाय की टपरी पे चाय पीते हो ना, चाय वाले भैया को
0: मैं बोलता हूँ,
1: क्योंकि वो चाय का स्वाद बढ़ जाएगा भाई।
0: कैसे, वो बना चुके ऑलरेडी, अब थैंक यू बोलने से क्या होगा,
1: अगली बार बढ़िया देगा ना।
0: और मान लो
1: फॉर लॉन्ग,
0: मान लो इस बार ही गंदी दे दी, अगली बार मैं जाऊंगा क्यों।
1: नहीं नहीं, अगली बार अच्छी पीने की उम्मीद से जाना, थैंक यू इसलिए बोल देते हैं यार, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में खड़े हैं,
0: पर पैसे भी तो ले रहे
1: हैं। पेट ना भरे इंसान अपना, फ्री में दे दे आपको।
0: तो ये चीज बात चाय की, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर और भी बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले चलाऊंगा आप लोगों के लिए गाने।
1: मैं दौड़ के आता हूँ थोड़ा सा,
0: ये दौड़ के आता है, मैं बाहर जाके चाय भी के आता हूँ। सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर मेरे साथ है,
1: रेडियो का जीटी बोलते हैं भैया, पूरा सही से बोला करो।
0: मेरे साथ है तुषार, मैं हूँ गौरव, और हम है रेडियो के
1: जीटी।

0: मुझे एक मैराथन रनर ने समझाया था कि जब भी लोगों की छुट्टी होती है ना, तो वो लोग खुश होते हैं कि आज सोने को मिलेगा, सोने को मिलेगा। मगर वो जो मैराथन रनिंग करते हैं वो खुश होते हैं कि आज एक्स्ट्रा दौड़ने को मिलेगा।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने भागने की बात इसीलिए करी थी कि मैं भाग के आता हूँ, थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो कभी।
0: बिल्कुल, ये भागने की तैयारी कर रहा है क्योंकि फरीदाबाद में हाफ मैराथन होने जा रही है 2026 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स में।
2: 67,000 लोगों से ज्यादा नहीं बताए, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है।
0: इतनी जल्दी?
2: हाँ भाई साहब, क्योंकि कोई भी मिस नहीं करना चाह रहा है। 27 सितंबर 2026 सूरजकुंड मेला ग्राउंड में ये जो मैराथन होनी है सुबह 6 बजे, वहाँ पर हरियाणा का कोई स्पेशल बंदे भी आने वाले हैं
0: और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी वहाँ पर ग्रीन फ्लैग दिखाकर मैराथन स्टार्ट करेंगे। और बता दूं आप सभी को, नशा मुक्त हरियाणा का संदेश भी हर घर तक पहुँचेगा।
2: कैटेगरीज मैं बता दूं?
0: बताओ।
2: 21 किलोमीटर, और उसके बाद 10 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर।
0: 5 किलोमीटर वाली होती है फन रन। अब मेरा सवाल तुझसे है कि तू कौन सी रनिंग करने वाला है इसमें?
2: इसके लिए मेरे को लग रहा है 10 दिन पहले मुझे दौड़ना पड़ेगा, तब मैं 10 किलोमीटर आऊंगा।
0: ना ना ना ना, अभी से देखो शुरू करना पड़ेगा ताकि तू 10 किलोमीटर रनिंग कर पाए। और जो 21 और 10 किलोमीटर की रनिंग करने वाले हैं उनकी पूरी ट्रैकिंग होगी RFID चिप टेक्नोलॉजी से, और इसी के साथ साथ 10 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस भी वहां पर होंगे।
2: क्या ये हमें मिल सकता है?
0: बिल्कुल मिल सकता है अगर हम लोग 10 किलोमीटर वाली रन करें, क्योंकि देखो जो मैराथन रनर्स होते हैं ना वो ज्यादातर 21 किलोमीटर पर जाते हैं, और जो रनिंग नहीं करते वो 5 किलोमीटर पर जाते हैं। बचा क्या, 10 किलोमीटर वाला स्लैब खाली रह गया ना, तो हम लोग वहीं जाएंगे।
2: अच्छा, तो हम लोग पूरी स्ट्रेटजी बैठा के जा रहे हैं, और बाई चांस 10 किलोमीटर में एक कोई फंस गया ना ऐसा तगड़ा, सारा करा का करा रह जाएगा इधर ही।
0: देख ऐसा है, टीम बना के चलेंगे, तू और मैं होंगे तो उसको बातों में लगा दियो।
2: मैं कह रहा हूँ रन फॉर फिटनेस, हम फिटनेस के लिए रन करते हैं, पैसा ऐसे छोड़ते हैं।
0: बिल्कुल पैसा छोड़ते हैं, और ड्रग फ्री हरियाणा का संकल्प लेंगे हम लोग और हरियाणा को मजबूत बनाएंगे।
2: तो रन फॉर फरीदाबाद,
0: रन फॉर फरीदाबाद एंड नशा मुक्त हरियाणा के लिए ये रन है। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो भी डायरेक्ट 27 सितंबर 2026 को सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स में। सुबह सुबह आपको कम से कम 5 बजे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे से सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए,
2: हम है रेडियो की जीटी, और मैं तो दौड़ने भी वाला हूँ।
0: और हम लोग लेते हैं आपसे इजाजत, सुनिए इस गाने को, हम दोनों दौड़ कर आते हैं।
3: हम तो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और आज मैं आपको बिजनेस अनप्लग्ड में कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे दौर की कहानी जब इंडिया का रोजमर्रा का खाना बहुत सिंपल था लेकिन चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। हमें जाना होगा इसके लिए लगभग 90 से 100 साल पीछे, उस इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के नीचे था, उस टाइम पे जहां सुबह की चाय होती थी लेकिन साथ में जो चीज अंग्रेज खा रहे थे वो आम इंडियंस के लिए एक क्लोज्ड दुनिया थी। वो चीज एक बॉक्स में आती थी, बॉक्स का नाम होता था हंटले एंड पामर्स। ये बॉक्स बड़ी बड़ी स्टोर से निकलता, सीधा अंग्रेज ऑफिसर्स के घर जाता, उनके बंगलोज, उनके क्लब्स और उनके महलों तक, और सुबह की चाय के साथ वो खाया जाता और इंडियंस बस देखते रह जाते। उन्हें पता ही नहीं होता था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, टेस्ट कैसा है और ये चीज कुछ लोगों के लिए है। उस वक्त वो चीज खाना नहीं थी, वो स्टेटस सिंबल थी जो अंग्रेज खा रहे थे और हम नहीं। और यहीं पर ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसी गैप को सबसे पहले नोटिस किया एक इंडियन ने। नाम था लाला राधा किशन, जिन्हें कई जगह लाला राधा मोहन भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार ये सोचा कि जो चीज अंग्रेज रोज यूज कर रहे हैं वो इंडियन घरों तक क्यों पहुंच नहीं सकते। सोचो जरा, जब मार्केट ही नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं और ब्रिटिश ब्रांड्स का पूरा कंट्रोल है, उस टाइम पे इस तरह सोचना कितना बड़ा रिस्क होगा। लोग हंस रहे थे, मार्केट रेडी नहीं थी और ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम था। पर यहाँ ये कहानी रुकती नहीं है, ये सिर्फ एक सोच थी, असली एक्सपेरिमेंट अभी शुरू होना बाकी था और इसी एक्सपेरिमेंट से आगे चलकर एक ऐसी चीज जन्म लेगी जो डिकेड्स के बाद भी हर मिडिल क्लास घर का हिस्सा बन जाएगी। पर कैसे, ये जानेंगे हम इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged. मैं आपके साथ गीत हूँ और जो इमोशन की मैं बात कर रही थी ना, ये है बिस्किट. चाय कंप्लीट करता है. जिस बिस्किट के बिना शाम थोड़ी अधूरी लगती है. एक टाइम था जब वो सिर्फ अंग्रेजों की प्लेट तक सीमित था. उस वक्त इंडिया में बिस्किट का मतलब था फॉरेन बॉक्स, फॉरेन टेस्ट और फॉरेन कंट्रोल. इंडियन बिस्किट्स को जानते भी नहीं थे. फिर इसी बीच एक इंडियन के माइंड ने पहली बार सोचा, हम भी क्यों नहीं. नाम था लाला राधा किशन. इन्होंने सबसे पहले एक देसी बिस्किट बनाने की कोशिश की. इस बिस्किट का नाम था द हिंदू बिस्किट. ये दिल्ली में लगभग 1898 के आसपास की बात है. आइडिया स्ट्रॉन्ग था, इंटेंट ऑनेस्ट था, पर टाइम टफ था. मार्केट रेडी नहीं थी. लोग बिस्किट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आते गए. फॉरेन ब्रांड ज्यादा पावरफुल थे, डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में था और रिजल्ट द हिंदू बिस्किट ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया. पर कहानी यही खत्म नहीं होती. कभी कभी एक फेलियर सिर्फ पॉज होता है, एंड नहीं. फिर आया एक बड़ा मोमेंट, स्वदेशी मूवमेंट. महात्मा गांधी ने जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी का नारा दिया तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदली, माइंडसेट बदलने लगा. लोग सोचने लगे, जो हम रोज यूज करते हैं क्या वो हम खुद नहीं बना सकते. और ये सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही. ये सोच गुजरात तक पहुंची और गुजरात में एक टेलर तक. एक सिंपल सा आदमी रोज सिलाई करता था, कपड़ों से घर चलाता था. पर स्वदेशी के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अंग्रेज बिस्किट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं. उस टेलर का नाम था मोहनलाल दयाल. इन्होंने सपना नहीं देखा, इन्होंने पॉसिबिलिटी देखी. और वहीं से इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है. एक टेलर, एक बिस्किट और एक देसी ड्रीम. कैसे आगे बढ़ती है ये कहानी, कैसे एक छोटी सोच एक बड़ी हैबिट बन जाएगी, जानेंगे हम थोड़ी देर बाद. पहले सुनते हैं गाना, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.
1: क्या चीज है पैसा,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज, योर अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

बिल्कुल, हम सफर में हैं और गाना है फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं एक बिस्किट की, नाम है पार्ले जी। साल था 1900। गुजरात के वालसाड से एक 12 साल का लड़का मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। ना कोई सूट केस, ना कोई बैकअप प्लान, बस एक चीज थी, काम सीखना है, जिंदा रहना है। मुंबई में इस लड़के ने सिलाई सीखी। कपड़ों के बीच सुई धागे के साथ रोज का दिन निकालता रहा। सिलाई सीखने के बाद कुछ दिन दूसरों की दुकानों पर काम किया, ऑब्जर्व किया, सीखा और चुपचाप ग्रो करता गया। 6 साल बाद जब वो लड़का 18 साल का हुआ तो मुंबई के गांव देवी एरिया में उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली और यहीं से इसकी जिंदगी ने स्पीड पकड़नी शुरू की। वो सिर्फ टेलर नहीं रहा, वो बिजनेस समझने लगा। कुछ ही सालों में इन्होंने 2 कंपनीज खड़ी कर दी थी और धीरे धीरे वो लड़का मुंबई के सिल्क मार्केट में एक पहचान बन गया। नाम था मोहन लाल दयाल। सिल्क का काम चल रहा था पर दुनिया बदल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, मार्केट से ले सप्लाई रुक गई और तब मोहनलाल दयाल ने एक बड़ा डिसीजन लिया, सिल्क बिजनेस बंद। वो अपने 5 बेटों के साथ एक नया रास्ता सोचने लगे और इसी बीच स्वदेशी मूवमेंट दिल और दिमाग दोनों में था। इन्होंने सोचा बिस्किट सिर्फ अंग्रेज खा रहे हैं, इम्पोर्टेड, महंगे, आम आदमी से दूर। मोहनलाल दयाल ने सोचा अगर खाना है तो सबके लिए होना चाहिए ना। 1928 में इन्होंने एक कन्फेक्शनरी कंपनी शुरू की, नाम रखा गया हाउस ऑफ पार्ले। सीखने के लिए जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ कन्फेक्शनरी बनाना सीखते हैं। 1929 में 60,000 रुपए की मशीन खरीद कर इंडिया लौट आए, फैक्ट्री शुरू की, पहली बनी ऑरेंज कैंडी। और फिर 1939 में मोमेंट आया जब बिस्कुट बनाना शुरू हो गया। उस वक्त मार्केट पर ब्रिटिश ब्रांड्स का राज था, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने एक अलग बात सोची, सस्ता, देसी, हर किसी के लिए। इंडिया में बना, इंडियन लोगों के लिए बना और बस यहीं से एक बिस्किट आदत बन गया। जो अंग्रेजों की टेबल से निकला वो इंडियन चाय के साथ घर घर पहुंच गया। और ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, इमोशन था, यही था पार्ले का असली बेस। और आगे की कहानी गाने के बाद। फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी के सफर की। पार्ले का सफर शुरू हुआ एक स्मॉल स्केल से, एक टेलर के विजन से जो सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए कुछ टेस्टी और अफोर्डेबल क्रिएट करना चाहता था। 1929 में शुरू हुई फैक्ट्री में पहली चीज बनी ऑरेंज कैंडी बच्चों के लिए, घर घर के लिए सिंपल स्वीट। पर 1939 में बिस्किट बनना स्टार्ट हो गया, मार्केट टफ थी, ब्रिटिश ब्रांड डोमिनेट कर रहे थे, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने सोचा हर इंडियन के लिए एक देसी बिस्किट, और इसी सोच के साथ पार्ले जी का फाउंडेशन बना। एनर्जी रिच, पॉकेट फ्रेंडली और इजी टू ईट, लोगों ने इसे तुरंत अपनाया। 1950 से 1960 में पार्ले ने स्नैक्स और कैंडीज एक्सपेंड किए, मोनाको, किसमी, पॉपिंस, हर प्रोडक्ट सिंपल, टेस्टी और अफोर्डेबल। और 1980 ये वो वक्त था जहां पार्ले ग्लूकोज

ऑफिशियली बना, यानी कि पार्ले जी। जी का मतलब था ग्लूकोज, एनर्जी का सिंबल। बचपन से लेकर एडल्ट तक हर कोई इस बिस्किट को पसंद करने लगा और मार्केटिंग भी काफी इनोवेटिव थी। शक्तिमान, छोटी बच्ची का एड, सिंपल और मेमोरेबल, हर घर में पार्ले जी हर चाय के साथ एक हैबिट बन गई। आगे 1990 से 2000 में चॉकलेट, नमकीन, स्नैक्स और ग्लोबल एक्सपेंशन, अफ्रीका, मेक्सिको। पार्ले ने बस इंडिया तक सीमित रहने से मना कर दिया। पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं था, ये इमोशन, कम्फर्ट और एक आदत भी बन गया था। हर लॉकडाउन, हर स्ट्रीट, हर ट्रेन जर्नी में ये बिस्किट साथ था। और सोचो, ये सब एक टेलर का सिंपल आइडिया था, एक सोच से, एक विजन से हर इंडियन को अपना बिस्किट मिले। ये कहानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है, एक ड्रीम और देशभक्ति की भी है। स्मॉल बिगनिंग्स, जायंट इम्पैक्ट। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी शो

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

मूवी रंग दे बसंती और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी की कहानी के बारे में। पार्ले जी सिर्फ टेस्ट और क्वालिटी के लिए फेमस नहीं था, ये हर इंडियन के लिए एसेसिबल बनने के लिए फेमस था। छोटे बजट वाले घर, स्कूल बच्चे, स्ट्रीट वेंडर, सबके लिए बिस्किट अफोर्डेबल था और यही डेलिबरेट स्ट्रेटेजी थी मोहनलाल दयाल की। बिस्किट को महंगा बनाने से फायदा नहीं है बॉस, सबको खाना मिले तभी इम्पैक्ट और लॉयल्टी बनती है और इसीलिए पार्ले जी ने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्राइस मेंटेन किया। रिजल्ट, हर इंडियन की चाय का कंपेनियन बन गया, हर ट्रेन जर्नी, हर स्कूल लंच, हर टी स्टॉल के साथ। और इसी अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ने पार्ले जी को एक नेशनल हैबिट और एक इमोशन से कनेक्ट कर दिया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

वैसे जब पूरी कोशिश की जाती है तो जीतना मुमकिन हो जाता है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही थी पार्ले जी के सफर की। पार्ले जी का सफर सिर्फ एक बिस्किट बनाने तक सीमित नहीं था, ये कहानी है विजन और स्ट्रगल की। सोचिए, एक 12 साल का लड़का गुजरात से मुंबई आता है सिर्फ सिलाई सीखने, जिंदा रहने के लिए, और वही लड़का मोहनलाल दयाल इंडिया के लिए एक ब्रांड खड़ा करता है जो आज भी हर घर, हर चाय, हर स्कूल लंच का पार्ट है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने एक आइडिया को कल्चर में कन्वर्ट किया, अफोर्डेबल, एसेसिबल और देशभक्ति से इंस्पायर्ड। और ये तीन पिलर्स ही पार्ले जी को दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। और ये भी याद रखिए।

ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी फेलियर, एक्सपेरिमेंट और पेशेंस की है। पहली कैंडीज फेल हुई, पहला बिस्किट फ्लॉप हुआ और फिर भी विजन का पीछा नहीं छोड़ा। और इसी वजह से पार्ले जी का मैजिक है हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करना, हर इंडियन के लिए फैमिलियर रहना और एक सिंपल स्वीट हैबिट बन जाना। तो अगली बार जब भी आप पार्ले जी के साथ चाय पिए या ट्रेन जर्नी में बिस्किट खाएं, तो अपने बचपन को याद करो और सोचो एक छोटा टेलर, एक ड्रीम और एक देशभक्ति का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये था सफर 12 साल के लड़के का, एक देसी बिस्किट ब्रांड का, एक इंडियन ड्रीम का और एक ग्लोबल इंस्पिरेशन का। आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड और मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक टीचर की मेहनत और दुआएं तो होती हैं, और आज है टीचर्स डे और इस खास मौके पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन अनसंग हीरोज को जिन्होंने कोई कैप तो नहीं लगाई है बट उनकी जो हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े होते हैं। तो स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट प्राची भारद्वाज का। ये एक टीचर है प्लस साथ ही साथ एक ऑथर भी है।
1: सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार टू ऑल माई ऑडियंस एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू टू रेडियो महारानी मुझे आज बुलाने के लिए इस टीचर्स डे के ओकेजन पे।
0: प्राची, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जानना चाहूंगा, जब आप एक स्टूडेंट हुआ करती थी तब टीचर्स का जो खौफ था और डर था, और अब जब आप एक टीचर बन चुकी है तब स्टूडेंट्स के अंदर वो टीचर का खौफ या डर है, इनमें क्या डिफरेंस आया है? उस टाइम जो हमारे लिए रिस्पेक्ट थी टीचर्स के लिए और आज जो रिस्पेक्ट है उन

0: में एक बड़ा डिफरेंस अगर आप बताएं।
1: बहुत चेंजेस आए हैं, तो यस बहुत चेंजेस तो आए ही हैं, क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट थी तो हमारे अंदर एक टीचर्स का डर हुआ करता था कि टीचर है, नो डाउट रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, टीचर्स का डर था, पेरेंट्स का भी डर था कि पेरेंट्स से भी एक डर लगता था कि चीज़ें कैसी रहेंगी घर तक अगर पहुंच गई तो। बट आज जो मैं एक सबसे बड़ा चेंज फील करती हूँ कि नो डाउट बच्चे टीचर को रिस्पेक्ट तो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, बट एक वो जो डर था, वो डर वाला फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एज अ टीचर भी आज बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ एन आर दिस टाइम। इस जनरेशन को डील करने के लिए आपको बहुत ही पेशेंट होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लीलियंट होना पड़ता है, और कभी कभी उनके साथ एक फ्रेंड बनना पड़ता है, और जहाँ आप फ्रेंड हो जाते हो वहाँ डर ख़त्म ही हो जाता है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चेंज जो शिफ्ट मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट से अपने आज टीचर होने के टाइम का, वो यही लगता है कि तब बच्चों में डर था, एक खौफ था टीचर्स का कि अगर टीचर साइड से निकल गया तो आपको एकदम सीधे बैठ जाना है, सीधे खड़े हो जाना है एंड होमवर्क पूरा करके आना है। आज वो कहीं ना कहीं उतना नहीं है, आज बच्चा डरता नहीं है टीचर से, बट हाँ रिस्पेक्ट मैं कहूँगी तब भी थी, आज भी है, एक अच्छे टीचर की आज भी रिस्पेक्ट की जाती है, बच्चा समझता है और बच्चा मानता भी है कि ये टीचर है। तो ये मुझे लगता है एक सबसे ज़्यादा चेंज जो आया है।
0: तो ये हमारा टीचर्स डे स्पेशल शो है और आज हमारी गेस्ट है यहाँ पर प्राची, जिनसे हम ढेर सारी बातें इनकी टीचिंग जर्नी से रिलेटेड प्लस स्कूल से किस्सों से रिलेटेड जानते रहेंगे आज 89.6 रेडियो महारानी पर, कुछ हटके।

0: सुबह की बेल
1: आंखों में नींद,
0: बैग में बुक्स दिमाग में स्पीड, टीचर बोले
1: नोटबुक खोलो,
0: हम बोले मैम बस 2 मिनट्स प्लीज।

0: हैप्पी टीचर्स डे।
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
3: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
2: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
2: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
3: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
2: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
3: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के

0: किताबों से ज्यादा ये हमको जिंदगी का सिलेबस समझना सिखाते हैं, गलतियों से सीखना सिखाते हैं और सपनों को पंख देना भी सिखाते हैं। ऐसे ही टीचर्स को सेलिब्रेट करने का आज दिन है, आज है टीचर्स डे का दिन। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी ही टीचर है जो अपने बच्चों के सपनों को पंख दे रही है, प्राची उनका नाम है। बट प्राची, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा। अक्सर हमने ये सुना है ना कि टीचिंग लाइफ बढ़िया है, सुबह जाओ दोपहर तक घर आ जाओ, नो टेंशन नो किटकिट, बट क्या असली में क्या होता है या पीछे की कहानी क्या है, या ये जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक मिथ है?
1: सर, एक्चुअली आपने खुद ही आंसर दे दिया, देखो ये मिथ ही है। एंड यस, आई वुड लाइक टू से टू ऑल माय लिसनर्स, ये एक्चुअली एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब एक टीचर की अगर मैं आपको लाइफ बताऊं, एक डे रूटीन बताऊं, तो अराउंड हम सब सुबह 5:30 उठ रहे हैं, राइट, अपना लंच, अपने बच्चों का लंच पैक कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपने बच्चे को छोड़ के उन 40-45 स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ मेरी क्लास के, जो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। एक्चुअल में टाइम, जॉब टाइम स्टार्ट होने से पहले ही हमारी जॉब स्टार्ट हो चुकी है। 3 घंटे पहले हमने फिर ट्रेवल किया, अपने स्कूल पहुँचे, हम जितना थके उस टाइम तक, हम वो सब कुछ भूल के अपनी मॉर्निंग क्लास में उसी स्माइल के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ एंटर करते हैं, ताकि वो जो 40 स्टूडेंट्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं उनको ऐसा फील हो कि यस मैम इज़ फ्रेश एंड हैप्पी टुडे। अब हम वहाँ जा रहे हैं, पूरे दिन आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, एंड बच्चों की नोटबुक करेक्शंस कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट डाउट्स, सो मैनी थिंग्स अराउंड। इफ आई से अ सिंगल डे, इफ आई टॉक अबाउट अ सिंगल डे, आप एक दिन में अराउंड 150 स्टूडेंट्स को डील कर रहे हो, डिफरेंट 150 स्टूडेंट्स, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। आप अराउंड 5 क्लासेस में पढ़ा रहे हो जहाँ पे अलवाई 40-40 बच्चा है ऑन एन एवरेज, तो एक दिन में आप 150 स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हो, सबकी बात सुनना, सबको पर्सनल अटेंशन देना, सबके डाउट्स क्लियर करना, आज कौन क्या कर रहा है, क्या हुआ है उसकी लाइफ में। बच्चा जो पेरेंट के साथ शेयर नहीं करता, कभी कभी वो टीचर्स के साथ शेयर कर रहा होता है, तो हमें हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना है। उसके बाद उनके टेस्ट पेपर्स चेक करना, बहुत सब चीज़ें रहती हैं।

0: उसके बाद देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो एज अ टीचर जो हम लोग कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग. बच्चों के लिए करिकुलम डिजाइन करना, उनके लिए टेस्ट पेपर्स डिजाइन करना, आंसर शीट्स एंड सो मेनी थिंग्स. सो ये जो एक मिथ है सोसाइटी में, बहुत लोगों के माइंड में है कि टीचर ही तो है, दो बच्चे घर आ गई है, फ्री है, वो क्या ही थकी होगी पूरे दिन में, क्योंकि दो बच्चे आके तो वो रेस्ट ही कर रही है ना. तो आई थिंक ये एक्चुअल में गलत है. आज के टाइम पे वो टाइम नहीं रहा है जब टीचर्स इतने फ्री हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स घर जाके भी स्कूल का ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि नो डाउट स्कूल को एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा हैं, पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं.
1: मेरे को लगता है जितने लोगों का भी ये डाउट था ना कि टीचर की लाइफ बहुत आसान होती है, उन्हें करना ही क्या होता है, बस स्कूल जाना है, दोपहर तक घर आ जाना है, सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे आज. एक टीचर ही ये डाउट क्लियर कर सकती थी. 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके.

Hello everyone, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू डॉक्टर.

0: टीचर का हमें लाइफ में कुछ और याद रहे ना रहे, उनकी डांट हमेशा याद रहती है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और इस टीचर डे स्पेशल शो पे आज हमारे साथ हैं प्राची भारद्वाज, जो खुद एक टीचर है। तो प्राची, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है आपने किसी स्टूडेंट को ऐसे डांट दिया और बाद में खुद ही आपको लग रहा हो यार मैंने इसे गलत डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए था, या अब डांटो तो पलट के स्टूडेंट्स का जो तेवर होता है वो बिल्कुल अलग निकल आता है?
1: नो डाउट, देखो बच्चा तो बच्चा है, ठीक है, हर तरह का बच्चा रहता है। अगर हम 40 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो 40 स्टूडेंट्स एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं, हर कोई एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, एक डिफरेंट जगह से आ रहा है, तो हर कोई, कुछ बच्चे सिंसियर भी हैं, सिंसियर टुवर्ड्स देयर स्टडीज, कुछ बच्चे थोड़े नोटोरियस भी रहते हैं। तो आई थिंक बच्चों को शांत कराने का तरीका तो रहता है कीप देम बिजी, उनको किसी ना किसी टास्क में इन्वॉल्व रखो ताकि वो आपको सुने और बिजी रहे, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो, क्योंकि बच्चों के पास बहुत एनर्जी है, ठीक है। अगर हम उनको एंगेज नहीं करेंगे तो वो अपनी एनर्जी कहीं भी यूज़ करेंगे, फिर वो बातों में यूज़ करेंगे, फिर वो नोटोरियस एक्टिविटीज़ करेंगे, पेन फाइटिंग खेलेंगे, फिर वो क्लासेस में आपको अलग अलग आवाज़ हूटिंग करके आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी है, उनको तो हमें उस वो एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो उससे बेटर है आई थिंक हर टीचर जो करता है, आई डोंट वॉन्ट कि एक सजेशन नहीं है, बट आई थिंक हर टीचर ये करता है कि वो बच्चों को बिजी रखता है। आजकल तो वैसे भी इतने क्रिएटिव पेडागॉजीज हैं, इतनी क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स हैं कि बच्चा इंटरेस्ट लेता ही है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की तरह से एक चैप्टर को पढ़ाना हो या बच्चों को रोल प्ले कराना हो। तो आई थिंक कि वो तो मैं इजीली कर लेती हूँ अपने बच्चों को चुप रखना, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ और लैंग्वेज तो वैसे ही बच्चा वेट कर रहा होता है कि ओके अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अकाउंट्स इको से बोर हो गया हूँ, अब मैं बहुत पढ़ चुका हूँ न्यूमेरिकल्स, अब मुझे कुछ बोलना है, कुछ सुनना है जिसमें कुछ लिखना नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि सीनियर क्लासेस में तो बच्चे वेट कर रहे होते हैं लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज का स्लॉट लगे और टीचर हमें आके कोई कहानी सुनाए, कोई किस्सा सुनाए एंड कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बताए। तो ये चीज़ मेरी क्लासेस में रहती है। अब मुझे जो मुश्किल लगता है, मुझे मुश्किल लगता है एक टीचर होना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फर्स्ट आना है, लाइक देर इज़ नो स्कोप टू बी सेकेंड। सो आई थिंक कि टीचर होना इज़ मुश्किल रादर देन बच्चे संभालना, बच्चा तो संभाल ही लेते हैं हम, बट येस टीचर होना इज इट्सेल्फ आई वुड से वेरी प्राउड थिंग। एंड आज टीचर्स डे के मौके पे मेरे को अभी तक मौका नहीं मिला, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश ऑल माई टीचर्स, क्योंकि आज समझ में आता है कि इट वॉज अ डिफिकल्ट जॉब फॉर देम ऑल्सो, ऑल माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, वेरी हैप्पी टीचर्स डे।
0: ये बात तो मैं देखो प्राची मानूंगा, एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स को संभालना ये टीचर ही कर सकता है, तो हैट्स ऑफ है उनको। मेरे को नहीं लगता कोई नॉर्मल इंसान बच्चों को इतने प्यार से डील कर सकता है जो टीचर्स कर सकते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल हैं। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

जरा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिला मुझसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटो से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे कोई आठ के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट टिफनी, पियो की टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी, तेरे जैसा कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी गम फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: देखो हम बच्चे हैं और हमारे पास सबसे बड़ा टूल होता है एक्सक्यूज देना जब भी हमसे कोई काम टीचर सामने से बोल दे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ और टीचर डे स्पेशल शो पे प्राची भारद्वाज आज हमारे साथ स्टूडियो में है। प्राची, नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा यही आने वाला है, कोई ऐसा क्लास का इंसिडेंट जहां पर आपने होमवर्क दिया और बच्चे ने नहीं किया और एक्सक्यूज सुन के आपको लगा यार ये क्या फनी बात कर रहा है, ये क्या बिल्कुल ऐसी इलॉजिकल बात कर रहा है?
1: होमवर्क तो सर नो डाउट बहुत बच्चे नहीं करके आते हैं एंड एक्सक्यूजेस आई वुड से कॉमन एक्सक्यूजेस यही रहते हैं, कॉपी भूल गया, कर रहा था, टेबल पे कॉपी रह गई। और एक एक्सक्यूज जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है वो ये था कि मैम मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई है, तो आई वॉज लाइक ओके, बट वो एक नोटोरियस बच्चा था लाइक, तो मुझे था कि एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि लेट मी कॉल द पेरेंट एंड आस्क कि ऐसे घर पे कुछ मिस हैपनिंग हुई है। एंड जो उन्होंने कहा था कि ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, लकीली वो या आई वुड से इट वॉज अ नॉट गुड थिंग फॉर हिम, वो ग्रैंड फादर ने ही फ़ोन उठा लिया एंड आई वॉज लाइक कि सर कुछ मिस हैपनिंग हुई है घर पे, तो उन्होंने कहा कि किसकी मैम, मैंने कहा कह रहा है कि बाबा की डेथ हो गई है, कह रहा मैं तो बाबा ही बोल रहा हूँ। तो बच्चा देखिए बच्चा है फिर से ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बच्चे बहुत आई वुड से कभी कभी फनी एक्सक्यूजेस देते हैं और एक टीचर को पता होता है सर कि कब एक्सक्यूज है कब जेन्युइन रीजन है।
0: अच्छा अगला एक सवाल मैं इसी में पूछना चाहूंगा, आपको अगर हम एक दिन के लिए वापस स्टूडेंट बना दे तो आप अपनी कौन सी टीचर के पास वापस जाना चाहोगे या कौन सा सब्जेक्ट वो है जिसे अटेंड करना चाहोगे?
1: मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे, बट हाँ अगर किसी टीचर की क्लास मैं दोबारा से लाइक अटेंड करना चाहूँ तो वो अगेन मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहूँगी, तो वो मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी। एंड टीचर लाइक टीचर का मैं नाम लूँ तो मेरे सारे इंग्लिश टीचर्स, जैसे चलो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने इंग्लिश टीचर्स को भी एक आई वुड से सैल्यूट या फिर उनको भी एक रिकॉग्नेंस देना चाहूँगी, जैसे जगदीश सर थे हमारे इंग्लिश के, हमारे अशोक सर थे, निशा मैम थी, तो सारे टीचर्स थे, सबकी मैं क्लासेस दोबारा अटेंड करना चाहूँगी। एंड वो सारी जैसे वो पढ़ाते थे कहीं ना कहीं आज मैं उस चीज़ को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि सीखा वहीं से ही है, जो जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है उसी में ही कुछ आई वुड से एडवांसमेंट करके आज मैं पढ़ा रही हूँ। तो आई थिंक इंग्लिश क्लासेस एंड अपने सारे इंग्लिश टीचर्स, नो नॉट अ स्पेसिफिक वन, बट हाँ तो याद भी नहीं है आई वुड से सबका नाम, बट हाँ जी इंग्लिश टीचर्स मेरे जो थे उनकी क्लासेस मैं दोबारा अटेंड करना ज़रूर चाहूँगी कभी लाइफ में मौका मिला तो।
0: तो ये है प्राची भारद्वाज जो खुद एक टीचर हैं और इन्हीं से हम टीचिंग की जर्नी, स्टूडेंट्स की जर्नी और ओवरऑल एक एज अ टीचर क्या फील होता है उसका समअप जानने की कोशिश कर रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: हमारी जो आज की गेस्ट है ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये एक ऑथर भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और प्राची, आप टीचर के साथ साथ एक ऑथर भी है, लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये लिखने का शौक कहाँ से आ गया?
1: ओके सर, सो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो पब्लिश हुई, एंड दैट इज अनबॉदर्ड। तो ये एक शिफ्ट था जो कि मेरे को लगा कि अब मैंने टेंसेस बहुत पढ़ा लिए हैं, जिससे बच्चों की मैंने टेंसेस बहुत सिखा दिए, बट अब मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो एक्चुअल में उनकी लाइफ रिफ्रेम कर सके। सो मैंने ये बुक लिखी अनबॉदर्ड, और जैसे कि टाइटल ही खुद कह रहा है कि यू हैव टू लीव ऑल द नेगेटिव एनर्जी, तो ये नो डाउट बच्चों के लिए, बट आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन देयर टीन्स एंड फॉर पीपल लाइक अस दोज हु आर इन देयर थर्टीज। ये बुक ये थी जब मैंने देखा कि आजकल बच्चा बहुत परेशान है उन कमेंट्स से जो कि उनके फ्रेंड्स उनको पास ऑन कर रहे हैं, हम एज अ वर्कर्स परेशान हैं उन कमेंट्स से जो कि एक्चुअल में कोई यूज़ के नहीं है। तो अनबॉदर्ड इज़ अ बुक जो कि आपको ये बताता है कि लाइफ में बहुत लोग कमेंट करेंगे, बट आपको कैसे अनबॉदर्ड रहना है, आपको अपनी लाइफ पे कैसे फोकस करना है, दिस इज समथिंग जो मैंने इस बुक में लिखा। तो ये एक नो डाउट शिफ्ट था रेड पेन से एक राइटिंग पेन के टुवर्ड्स जो मैंने किया, एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस जो कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखूं। एंड ये सब टॉपिक्स मुझे बच्चों से ही आए कि जो मैं उनको देख रही हूँ आजकल, वो पीयर प्रेशर में है, आजकल वो डिप्रेशन में है, वो आजकल अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। एंड नॉट ओनली बच्चे, अगर मैं बात करूँ हमारी एज अ यंग जनरेशन, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, हम लोग कंपैरिजन में है, हम लोग उन सारे चीज़ों से बाउंडेड है जो कि एक्चुअल में किसी भी वर्थ की नहीं है, बट वो हम लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को मैटर कर रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अनबॉदर्ड, एंड अब वो सारे ही आपके अमेजोन एंड आपके सारे यू कैन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। सो यस, दिस वॉज अ शिफ्ट, एंड नो डाउट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लासरूम्स का, उसी ने मुझे मोटिवेट किया क्लासरूम एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड रादर से, कि जिसने मुझे मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए। एंड या द बुक इज डूइंग गुड,
0: ऑल दी वेरी बेस्ट आपकी ये बुक के लिए जो अभी आई है। आई होप बहुत सारे लोग उसे रीड करें, बहुत सारे लोग इस पे रिव्यू दें, बहुत सारे लोग इस पे फीडबैक दें, और आप आगे ऐसे भी और बुक्स जो हैं वो लिखती रहें। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन्हें एक टीचर की लाइफ से रिलेटेड, एक स्कूल की लाइफ से रिलेटेड फिर से वो सारा रिकैप देने के लिए। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे, एंजॉय योर डे एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: और महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो मैं लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। या किडनी केयर मंत्रा की मैं बात करूं तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रखें, मोटापे से बच के रहें, वजन को कंट्रोल रखें और अननेसेसरी पेन किलर नहीं रहें, क्योंकि किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ पेन किलर है। तो इन चीजों का ख्याल रख के हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ठीक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अका गुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल हैं। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार.

जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।

0: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज ऑर्गन इंडिया की टीम से सुनैना सिंह स्टूडियो में है और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलते हैं सुनैना के पास।
1: धन्यवाद पायल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सुनैना सिंह हूँ और मेरे साथ हैं आज अक्षय रुस्तगी। अक्षय, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सुनैना मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे अपनी कहानी दोहराने के लिए एक मौका देने के लिए, लोगों को अपनी बीती सुनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा। अक्षय के पिताजी मनोज रुस्तगी का 2019 में फेफड़ों का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट हुआ था। फेफड़ों का प्रत्यारोपण काफी दुर्लभ है और लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आज अक्षय यहाँ अपने पिता, अपने परिवार और प्रत्यारोपण तक की उनकी यात्रा के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अक्षय, ये सब बातें करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए।
2: जी, मेरा नाम अक्षय है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ जो कि एक 25 साल पुराने टिम्बर बिजनेस से इन्वॉल्व है।
1: अच्छा, टिम्बर बिजनेस यानी कि लकड़ी का
2: व्यापार।
1: अच्छा,
2: सो मैं, मेरी मदर, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भाभी, हम सब साथ में रहते हैं।
1: अच्छा, आपके जो पिताजी हैं वो भी इसी बिजनेस में काम करते हैं?
2: ये व्यापार मेरे पिताजी ने ही शुरू किया था।
1: अच्छा।
2: सन 1989 में, एंड उसके बाद से ही हम लोग ने सबने वही बिजनेस ज्वाइन किया एंड अभी तक हम सब उसी में कनेक्टेड हैं।
1: ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके पिताजी के प्रत्यारोपण के बारे में।
2: जी।
1: उनको फेफड़ों की बहुत गंभीर बीमारी हो गई।
2: जी।
1: तो ये कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई?
2: जी, पहली बार जब ये हुआ था तब मेरे पापा को खांसी जुकाम की शुरुआत हुई थी, बट ये खांसी जुकाम ना बहुत फ्रीक्वेंटली जल्द जल्द आने लगा। तो हमने जब नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि एक बार आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो फेफड़ों का इलाज करते हैं, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है। तो जब हम डॉक्टर के पास गए थे उस टाइम, तो उन्होंने बताया कि आपको एक ILD नाम की बीमारी है। ये ILD नाम की बीमारी तब पता लगी जब उन्होंने हमें CT स्कैन कराने के लिए बोला। तब उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि होता होगा कोई, जैसे नॉर्मल BP शुगर की बीमारियां होती है, ILD नाम की भी कोई बीमारी होगी, क्योंकि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी उस टाइम, ऐसा कुछ था नहीं। बिल्कुल ये होता, जैसे खांसी जुकाम हुआ, खांसी जुकाम में इंसान थोड़ा ढीला हो जाता है, तो वही होता था। डॉक्टर दवाई देता था शुरुआत में और वो ठीक हो जाते थे। तो हम लोग ने इस स्थिति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, हमें लगा कि बिल्कुल ठीक है। पर जब सन 2016 आया तब पता लगा कि ये बीमारी कितनी गंभीर थी।
1: फेफड़ों के बारे में हमारे पास मेरे ख्याल से कम जानकारी होती है, हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते
2: जी।
1: और कभी कभी सोचते हैं कि हाँ नहीं ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप बता रहे थे आपने इतना सीरियसली नहीं लिया।
2: हर बार क्या होता है, जैसे मैं कहूंगा कि जो हमारे हिंदुस्तान में घरों में होता है कि नहीं ये कर ले, एक हफ्ता रुक जा, देख ले, हम लोग डॉक्टरों के पास जाने से बचते हैं कि यार हॉस्पिटल जाएंगे तो वो मोटा बिल ही बनाएगा हमारा, घर पे ठीक कर लेते हैं पास के डॉक्टर के, या नहीं मेरा भाई डॉक्टर है मैं तेरे को दवाई बता देता हूँ वो ले ले ठीक हो जाएगा, तो हम लोग बचते हैं जहाँ तक हॉस्पिटल जाना, और तब तक ये बीमारी बड़ा रूप ले लेती है।
1: अक्षय, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर चर्चा करेंगे कि प्रत्यारोपण तक बात कैसे पहुँची। बस थोड़ी ही देर में आते हैं।

0: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे,
1: अरे उठ बाजी ले अपने हाथ,
0: टाइम जा रहा है भाई तो करे रीस्टार्ट।

0: रीस्टार्ट।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जीवन एक अनमोल उपहार। आज के कार्यक्रम में फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बारे में हम अक्षय रुस्तगी से बात कर रहे हैं, और जिन्होंने ये बताया कि उनके पिताजी को इंटरस्टेशियल लंग डिजीज हो गई थी और बात बहुत बिगड़ गई थी। तो अक्षय, अब 2008 में उनका पहले डायग्नोज हुआ कि उनको ये प्रॉब्लम है
3: जी।
2: फिर 2014 से लेकर 2018 तक वो बार बार अस्पताल में भर्ती हुए
3: जी।
2: तो प्रत्यारोपण की बात आपको किसी ने करी, उसकी बात कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 2008 में भी 2014 में भी, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे?
3: जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार मुझे प्रत्यारोपण के लिए जानकारी प्राप्त हुई थी जब पहली बार ही मेरे पिताजी एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। पर तब ये कहा गया था कि प्रोसीजर जो होता है, ये प्रक्रिया बहुत ही महंगी है, कम से कम आपकी जेब में 4 से 5 करोड़ होने चाहिए, और ये विदेश में होती है, खाली केवल और केवल विदेश में है। तो उस टाइम हम लोग को लगा कि देखते हैं अभी कि कितना क्या स्थिति रहती है आने वाले टाइम में।
2: तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, किसी डॉक्टर ने बताया था या?
3: जी, उसी टाइम जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे उन्होंने बताया था कि अगर ये ठीक नहीं हुए, क्योंकि जहाँ तक इनके फेफड़े देख के लग रहा है ये ठीक नहीं हो पाएंगे, उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है और शायद अभी हम कुछ कहेंगे ही नहीं। हम जैसे रोज पूछते थे उनसे कि सर क्या उम्मीद है क्या है, वो लोग बोलते थे कि अभी देखते हैं। तो हमने बोला सर अगर कुछ दिक्कत हुई तो उन्होंने बताया कि विदेश में प्रत्यारोपण होते हैं। तो हमने बोला विदेश में कहाँ? बोलते आप अमेरिका जा सकते हैं, आप सिंगापुर जा सकते हैं, पर आपकी जेब में कम से कम 4 से 5 करोड़ होने चाहिए।
2: तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में भी लंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, फेफड़ों के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं?
3: नहीं, उस टाइम किसी ने मुझे जानकारी नहीं दी,
2: क्योंकि भारत में 2014 से शुरू होते हुए ट्रांसप्लांट हो रहे हैं फेफड़ों के
3: जी। बट जैसे कि हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, या तो आप कुछ कहिए कि डॉक्टर की जानकारी की कमी थी, जो भी था उन्होंने मुझे इंडिया भारत का रेफरेंस नहीं दिया।
2: अच्छा, तो ठीक है। तो सबसे पहले 2018 में आपको बताया गया कि फेफड़ों का ट्रांसप्लांट करना चाहिए और ये एक ऑप्शन है आपके पास?
3: जी बिल्कुल, जब ये पापा बार बार भर्ती होने लगे अस्पताल में, जब बार बार लंग्स इन्फेक्शन पकड़ने लग गए, क्योंकि जैसे ही लंग्स फेफड़े हमारे ILD पकड़ते हैं तो अपने आप ना शरीर की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, क्योंकि जब ILD वाले मरीज को इतनी दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो स्टेरॉइड्स जो होती हैं उनका एक ड्रॉबैक होता है, वो बॉडी की इम्यूनिटी खत्म कर देती है। तो इंसान में बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, हल्की सी खांसी जुकाम से ही ILD का मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
2: अच्छा
3: जी, तो बार बार पापा, जैसे शुरुआत में होता क्या था कि पापा 6-6 महीने में एडमिट हो रहे थे, फिर धीरे धीरे 6 महीने का गैप 3 महीने बन गया, 2019 आते आते जो कहानी 6 महीने में शुरू हुई थी वो एक दिन पे आके रुक गई थी, कि मेरे पिताजी घर आए थे रात को और अगले दिन सुबह वो सीधा ICU में चले गए थे।
2: तो फिर ये सब होने के बाद आपने क्या डिसाइड किया ट्रांसप्लांट के बारे में
3: जी?
2: कैसे आपने निर्णय लिया कि अब ये कराना ही है?
3: तो जैसे कि बताना चाहूंगा, पहले इस बीच पापा बार बार भर्ती होने लगे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने वहाँ, डॉक्टर अर्जुन खन्ना नाम के एक डॉक्टर थे, हैं यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी के, उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्यों अपने पापा को एक बार ट्राई देना दीजिए, एक बार ट्राई कि मतलब वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं लंग ट्रांसप्लांट के लिए, उनकी बाकी ऑर्गन सही तरीके से काम कर रही हैं, तो एक बार आप जाके करवाओ ट्रांसप्लांट, अब तो भारत में ही होने लगा है। तो पहली बार उन्होंने मेरे को कन्वेंस करने बोला था कि ILD एक ऐसा डिजीज है जिसमें आगे जाके स्थिति खराब ही होती है, तो इसका एक ही और केवल एक ही इलाज है प्रत्यारोपण, जैसा कि आपने कहा। तो पहली बार तभी मुझे पता लगा था, और जैसा कि मैंने बताया कि 2019 में जब पापा रात को डिस्चार्ज होकर घर आए थे और सुबह फिर से हॉस्पिटल चले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने सारी दवाइयाँ सब कुछ करके देख लिया, उनके फेफड़े किसी भी तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ गई थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब रात को तो बिल्कुल ठीक था, आपने डिस्चार्ज किया, सुबह एकदम ICU की स्थिति आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ILD डिजीज ही इतना खतरनाक है, हम कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आज क्या होगा कल क्या होगा। वो कहते हैं कि आपके पिताजी तो 15 साल जेल भी गए इस बीमारी को, लोग 1 महीने में भी जवाब दे देते हैं।
0: अच्छा।
3: तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि अब फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं और प्रत्यारोपण ही एक केवल और केवल एक ही इस चीज का जवाब है।
2: ठीक है, तो आप कहाँ गए प्रत्यारोपण
3: जी? तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ प्रत्यारोपण के लिए, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि साउथ में चेन्नई में एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप अटावर के नाम से, आप वहाँ चले जाओ, उन डॉक्टर का बहुत ही ज्यादा हाथ साफ है। तो अगले ही दिन उन्होंने, मतलब मैंने डॉक्टर की, डॉक्टर संदीप की टीम को कॉन्टैक्ट किया और उनकी टीम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, मेरे को एयर एम्बुलेंस से कॉन्टैक्ट करवाया। सो 19 फरवरी की सुबह मेरे पिताजी एयर एम्बुलेंस से उसी दिन की रात को मेरे पिताजी चेन्नई के अस्पताल पहुंच गए, जहाँ की जहाँ डॉक्टर संदीप पटावर की टीम ने आते ही उन्हें चेक किया, एकदम आते ही बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा ट्रीटमेंट दिया कि वो, क्योंकि वो एक लंबा 3 घंटे का सफर विमान में करके आए थे, वो भी ऐसी गंभीर हालत में। तो फटाफट उनको आते एकदम जो फर्स्ट एड दी जाती है एनालाइज किया प्रॉपरली, आते ही फिर उसके उन्होंने 7 दिन उनके कुछ ब्लड टेस्ट चले ये देखने के लिए कि क्या वो एक सुटेबल कैंडिडेट है कि नहीं,
2: क्योंकि सर्जरी में सर्जरी करना भी बहुत बड़ी चीज है,
3: बहुत गंभीर चीज है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर्जरी, और सर्जरी के लिए फिट होना बहुत बड़ी चीज है। तो सर्जरी के लिए आप फिट है कि नहीं, उसके लिए उन्होंने 7 दिन कुछ ब्लड टेस्ट किए, कुछ रेडियोलॉजी टेस्ट किए, जिसमें ये पता लगता है कि क्या आप एक सुटेबल कैंडिडेट है कि नहीं। तो भगवान का शुक्र था कि मेरे पिताजी एक सुटेबल कैंडिडेट थे और डॉक्टर ने बताया कि अभी आप थोड़े से अनफिट है ट्रांसप्लांट के लिए, आपको थोड़ा सा डाइट और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी यूज करना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा फिट करने के लिए। तो जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमने पिताजी को वो डाइट दी, अपने फिजियोथेरेपी कराई, और बीच बीच में हर हफ्ते डॉक्टर साहब हमें हॉस्पिटल बुलाते थे चेकअप के लिए, देखने के लिए कि मेरे पिताजी मतलब ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं कि नहीं, और या कोई दवाई वाई चेंज करनी है। तो इस बीच काफी अच्छा ध्यान रखा गया।
2: अच्छा, तो अक्षय, तो आपने डॉक्टर को तो दिखा दिया और आपके पापा को वेटिंग लिस्ट पे उनका नाम डाल दिया गया कि अभी नहीं डाल दिया गया?
3: 1 महीने बाद मेरे पिताजी फिट हो गए थे
2: और वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया।
3: जी, उनको वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया गया।
2: ठीक है, तो अक्षय यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे, ट्रांसप्लांट कब हुआ, कैसे हुआ और उसके बाद की जिंदगी कैसी है।
3: जी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार, जीवन एक अनमोल उपहार कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। मैं हूं अक्षय रुस्तगी के साथ। और अक्षय बता रहे थे कि उनके पिताजी का फेफड़ों का ट्रांसप्लांट हुआ है। अक्षय, हमने अभी तक की बात की थी कि आपको बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि फेफड़े हैं, लेकिन हर बारी कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी, या तो फिर लंग मैच नहीं कर रहे थे, या फिर कोई और था जो ज्यादा बीमार था उसको मिल गए। तो फाइनली आपको कॉल कब आया?
2: फाइनली 18 मई 2019 को सुबह सुबह, या फिर कहिए कि मुझे 10 बजे कॉल आया कि आपके पापा को के लिए हमें सूटेबल फेफड़े मिले हैं, तो आप तैयार रहिएगा। तो उस टाइम को ना हम लोग भी थोड़े नॉर्मल हो गए थे कि पता नहीं इस बार भी पहले की तरह मनाना कर दे,
1: यकीन नहीं हो रहा होगा,
2: यकीन नहीं हो रहा था। तो आप विश्वास कीजिएगा, जब इस बार कॉल आई तो ना ही मैंने अपनी मदर को बताया, ना ही मैंने अपने पिताजी को बताया, क्योंकि ना वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वो मुझसे कहने लगे थे कि शायद, मुझे लग रहा कि भगवान भी नहीं चाहता मैं बचूं, इसलिए 7 कॉल आ चुकी हैं और मेरे को फेफड़े नहीं मिल रहे हैं। पर 8वीं कॉल तक जब तक उन्होंने कंफर्म नहीं कर दिया कि हॉस्पिटल आ जाओ, तब तक मैंने ना अपने पिताजी को बताया ना अपनी माता को बताया। तो जैसे ही कंफर्मेशन मिली मेरे को, 12 बजे उन्होंने एकदम से बोला कि फटाफट हॉस्पिटल आइए, ऑर्गन मिल गई हमें। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बेड से ऐसे उछला एकदम कि मम्मी मम्मी मम्मी भागो मिल गई। तो आप ऐसे करिए जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है ना, इतनी खुशी थी हमें, अरे फाइनली हमारा नंबर आ गया, भागो भागो भागो। तो एकदम से हमने एम्बुलेंस बुलाई, तुरंत एम्बुलेंस आ गई, और तुरंत मेरे पापा 15 मिनट के अंदर हमारे घर से पापा आईसीयू में चले गए थे। तो बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका था, जब जिंदगी में इतनी उदास घटनाएं देखने के बाद, ऐसी स्थितियों से गुजरने के बाद, वो पहला खुशी का मौका था जब हम लोग को इतनी एक्साइटमेंट मिली कि अरे वाह, चलो पहली सीढ़ी पे तो हम पहुंच गए। अब बाकी जब भगवान ने पहली सीढ़ी पे पहुंचाया तो आगे भी हमें चढ़ाएगा वो।
1: तो फिर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आईसीयू में चले गए, डॉक्टर ने क्या बोला आपको?
2: जी, तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मेरी मुलाकात डॉक्टर संदीप से हुई। डॉक्टर संदीप ने कहा कि मेरी मनोज जी से बात हुई है, अब आप चिंता ना करें, जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। तो 12 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, और 12:30 बजे डॉक्टर संदीप और उनकी टीम मेरे पिताजी को ओटी में ले गई थी, और वहां उन्होंने ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन 12:30 चल के रात के 12 बजे खत्म हुआ। फिर मेरे पिताजी को 1 से 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि वो कैसा कर रहे हैं, और 2:30 बजे डॉक्टर संदीप अटावर बाहर आए, ऐसे जैसे कि एकदम मूवीज में दिखाते हैं कि एक स्टार आ रहा है,
1: हीरो आ रहा है,
2: हीरो आ रहा है जंग जीत के। तो मेरे लिए वो एक भगवान, स्टार सब थे, एकदम बाहर आए, और मैंने डॉक्टर साहब को ऐसे देखा उम्मीद से कि कुछ बढ़िया सी खबर सुना दे, मेरा मतलब दिल खुश कर दे। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो मनोज जी, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब को एकदम पकड़ के हक कर लिया, और मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा लगा कि भगवान ने सारी टेंशन एकदम से हवा में खींच ली मेरी,
1: और आपके सारे सपने पूरे,
2: सारे सपने पूरे हुए जी। मतलब ऐसी चीजें मुझे सपने में आती थी कि हमें ऑर्गन मिल गई, मेरे पिताजी ठीक होने वाले हैं, और वो सपना उन्होंने सच कर दिया उस रात को।
1: सर्जरी के कितने समय बाद मनोज जी को डिस्चार्ज किया गया?
2: जी, सर्जरी के 1 हफ्ते पूरे होने तक मेरे पिताजी की ऑक्सीजन बिल्कुल हट गई थी, जो कि मुझे सपनों में दिखता था कि ऑक्सीजन हट गई है। और
1: अच्छा, ये भी सपनों में दिखता था
2: जी? बिल्कुल, ये एक सपना था मेरे लिए। मतलब हम लोग, ये होता है ना, जो सोचते हैं वही सपने में आने लग जाता है। तो जो मेरे सपने में आता था कि पिताजी के ऑक्सीजन बिल्कुल हट चुकी है, सब ठीक हो गया है, वो ही मुझे धीरे धीरे मतलब दिखने लगा कि अरे वाह यार, सपने सच भी होते हैं। मेरे पिताजी आईसीयू से 3 दिन में बाहर आ गए थे सर्जरी के, और 1 हफ्ता पूरे होते होते डॉक्टर ने कहा कि अब आप घर जा सकते हो।
1: तो अक्षय, यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं,

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जीवन एक अनमोल उपहार। तो अक्षय, आप हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
2: जी, मैं सबसे पहले तो मैं उस परिवार को धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने अपने परिवार वाले के अंगदान करने का डिसीजन लिया और मेरे पिताजी को एक जीवन दान दिया। जैसा कि मैं सबको बोलना चाहूंगा कि एक दिन तो हम सभी को जाना है, हम सबको मिट्टी बन जाना है, क्यों ना जाते जाते एक अच्छा काम कर जाए, क्यों ना ऐसा काम कर जाए कि लोग हमें याद रखें। तो जाते जाते मैं यही चाहूंगा कि हम सब अपने अंगदान करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको मिट्टी बनना है। हमारे एक छोटे से डिसीजन से काफी लोगों के चेहरों पे स्माइल लाई जा सकती है
1: और बहुत सारी जाने भी
2: बचाई जा सकती है।
1: अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लोगों को दी, लंग ट्रांसप्लांट के बारे में, फेफड़ों की बीमारियों के बारे में और लोग कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, वो भी आपने हमें बताया कि हम थोड़ी गंभीरता से लें अगर हमको कोई प्रॉब्लम है। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सुनैना जी, ऑर्गन इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे ये अवसर दिया अपनी कहानी दोहराने का और लोगों को जागरूक करने का, जिससे कि जो मेरे पे बीती है वो लोग जिन पे बीत रही है वो सही तरीके से सही डिसीजन ले पाए और टाइमली हेल्प ले पाए और अपनी जान बचा पाए।
1: शुक्रिया, शुक्रिया अक्षय। और मैं अपने सुनने वालों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट या अंगदान के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पे 1-800-120-3648 पे फोन करके जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। और आपको अगर अंगदान का संकल्प लेना है और पत्र भरना है तो वो भी आप फोन करके या वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। धन्यवाद।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंगदान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आर चेंचली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेहत की बात जब होती है तब हम अक्सर डाइट, फिटनेस और एक्सरसाइजेस की बातें करते हैं, लेकिन बॉडी के कुछ सिग्नल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैन अक्सर इग्नोर कर देते हैं, UTI। आज हम बात करेंगे UTI के ऊपर। यूरिन करते वक्त जलन, बार बार वॉशरूम जाना, यूरिन रोकने में दिक्कत या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन, क्या ये सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर बॉडी किसी बड़ी दिक्कत की तरफ सिग्नल दे रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेन में यूरिनरी इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या है और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ पोषण की पाठशाला में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आकिब, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर से आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकिब आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमें बहुत ही आसान शब्दों में समझाइए आखिर UTI क्या होता है, मेन में इसके सबसे कॉमन सिम्टम क्या है अगर हम सिम्टम्स की बात करें, और साथ ही ये बताइए कि किन सिम्टम को इग्नोर करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है।
1: सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मेरा नाम डॉक्टर आकिब है, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। प्रेजेंटली मैं यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 और सेक्टर 88 में काम करता हूँ। आपका सवाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली अगर हम बताएं तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो कि किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, कहीं भी उसमें इन्फेक्शन हो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इन जनरल लैंग्वेज जैसे पेशाब का इन्फेक्शन होना, वो लिमिटेड टू दीज ऑर्गन्स रहता है, उसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम में, मेन और वुमन, जनरली फीमेल्स में बहुत कॉमन रहता है UTI, मेल्स में उतना कॉमन नहीं रहता है, और अगर मेल्स में UTI होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड UTI। सो वो एक नॉर्मल UTI नहीं होता है। सिम्टम्स में पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, रुक रुक के पेशाब आना, फीवर या पेट के निचले वाले हिस्से में पेन होना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आना, या कई बार पेशेंट बोलता है कि मेरे पेशाब में ना बहुत गंदी स्मेल आती है, तो ये सब चीजें UTI हो सकती है। ये जो सारे सिम्टम्स है जो मैंने बताया, इनफैक्ट सारे सिम्टम्स इम्पोर्टेंट है। यूरिन में ब्लड आना, बार बार आपका यूरिन बार बार जाना, फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज होना, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना या रुक रुक के पेशाब आना, ये कॉमन सिम्टम्स है UTI के, और अगर प्लस फीवर, ये कॉमन सिम्टम्स है, और अगर ये चीजें आती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।
0: जी डॉक्टर, आज हमें डॉक्टर ने बहुत ही क्लियरली समझाया है कि यूरिन से जुड़े कुछ सिम्टम्स को कभी भी नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मेन में UTI होता क्यों है, क्या हमारी डेली हैबिट भी इसके पीछे की वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी जानेंगे डॉक्टर आकिब आपसे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर आकिब। तो डॉक्टर आकिब, आज हम बात कर रहे हैं मेंस यूटीआई हेल्थ को लेकर। सबसे पहले हमें ये बताया आपने कि आखिर यूटीआई क्या होता है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेन में यूटीआई होने का सबसे कॉमन रीजन क्या है, और क्या वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूटीआई अक्सर होता है, और साथ ही अगर यूटीआई को बहुत ही नॉर्मली लिया जाए तो इसका हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, मेल्स में यूटीआई जैसे मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। सो अंडरलाइंग वी हैव टू सी कुछ उनका प्रॉब्लम्स क्या है जिससे ये हो रहा है। सो कॉमन चीजें डायबिटीज, पोअर हाइजीन, साफ सफाई ना रखना, पानी का कम लेना, सो ये सब कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से मेल्स में यूटीआई हो सकता है। या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, स्ट्रक्चरल चीजें जो पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट में है, जैसे किडनी का शेप डिफरेंट है, किडनी में कोई स्टोन्स पड़े हैं, कई रास्ते में रुकावट है, जिसमें प्रोस्टेट एक ओल्ड एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उस पे हम आगे बात करेंगे, उसकी वजह से यूटीआईज बार बार हो सकते हैं। एक इसमें जो पॉइंट आपने बताया सेक्सुअल एक्टिविटी, यस दैट कैन आल्सो कॉज यूटीआई। सो अगर किसी पेशेंट को जनरली अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स के बाद में यूटीआई होता है या ये सिम्टम्स होते हैं, सो दैट इज आल्सो अ कॉमन रीजन। इसलिए उनको, दोनों पार्टनर्स को एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवा लेना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और आज मैं अकेली नहीं हूँ स्टूडियो में, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकिब। और आज हम डॉक्टर से जान रहे हैं मेंस यूटीआई हेल्थ के बारे में। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ अब यूटीआई के सिम्टम की, अगर किसी मेन को यूटीआई सिम्टम है तो डॉक्टर तक पहुँचने के बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, और साथ ही क्या यूरिन टेस्ट या फिर यूरिन कल्चर की जरूरत पड़ सकती है? इसके साथ ही ये भी बताइए, क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स लेने से सिम्टम कम होते हैं? और साथ ही अगर मेडिसिन बंद कर दे तो कितना डेंजरस हो सकता है अनट्रीटेड यूटीआई, अक्सर किडनी तक भी पहुँच जाता है? सो इस बारे में भी हमें बताइए।
1: यूटीआईज के सिम्टम्स क्या हैं? तो डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे और कैसे डायग्नोस होगा? सिम्टम्स हमने पहले बता दिए क्या क्या हैं। तो आप जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी एक हिस्ट्री लेगा, है ना, ये सब चीजें आपसे पूछेगा, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं वो पूछेंगे, और उसके बाद में आपको एग्जामिन कर लेंगे। उसके बाद में कुछ एक टेस्ट होते हैं, जैसे बेसिक टेस्ट, यूरिन का टेस्ट है जिसमें रूटीन और कल्चर टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, और अगर जरूरत पड़े कुछ ब्लड के टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं जिससे कि यूटीआई का डायग्नोसिस बनता है। रहा सवाल एंटीबायोटिक्स, खुद से एंटीबायोटिक्स लेना एक हमारी सलाह नहीं है, आपको प्रॉपरली डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स करे वो ले लेना चाहिए। अनट्रीटेड यूटीआई किडनी तक पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है। अनट्रीटेड यूटीआई अगर होता है किडनी तक पहुंचेगा तो उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइट्स। अगर पेशेंट को पाइलोनेफ्राइट्स होता है तो उसमें बुखार के साथ ठंड आना, कमर में बहुत दर्द होना और यूरिन की दिक्कत, ये सब चीजें रहती हैं। और एक बार किडनी इफेक्ट हो गई पाइलोनेफ्राइट्स तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। कई बार ट्रीटमेंट आपका जो है उतना सीवियर होता है, सिम्टम्स की बीपी कम होना, आईसीयू में पहुंचना, इन सब चीजों तक नौबत आ जाती है।
0: बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर की है। मतलब सिम्टम को दबाना नहीं बल्कि उनकी वजह समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है, ये भी याद रखिएगा। सो डॉक्टर, अभी हमने सिम्टम्स के बारे में बात की, प्रिवेंशन के बारे में बात की, लेकिन अपना कुछ ऐसे सिंपल हैबिट्स के बारे में भी जानेंगे जो मेंस अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं यू म्यूजिक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंशली और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है मेंस यूटीआई हेल्थ। सो मेरे साथ डॉक्टर बने हुए हैं डॉक्टर आकिब स्टूडियो में। डॉक्टर, मैंने बहुत कुछ जाना आपसे यूटीआई के बारे में, सिम्टम्स के बारे में भी जाना, प्रिवेंशन के बारे में भी जाना, लेकिन अब बात करते हैं यूटीआई से बचने के लिए मैंने अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल हैबिट्स है जो अपना सकते हैं, और साथ ही अगर बात की जाए फीवर, चिल, बैक साइड पेन, वॉमिटिंग या फिर यूरिन में ब्लड जैसे सिम्टम्स जब आ जाएं तो क्या इमरजेंसी वार्निंग साइन हो सकते हैं जिन्हें एक मैन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। ये सारी सिम्टम्स जो हैं जैसे ब्लड आना, फीवर, बार बार यूरिन जाना, पेशाब करने में जलन होना, ये सारी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसमें से आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना इन्वेस्टिगेशन और आगे का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। नाउ आपने बताया प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मेल्स, लिक्विड इनटेक अच्छा रखना, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है और साफ सफाई का ख्याल रखना। खासकर मेल्स में फोर स्किन कई बार रहती है जो सम पीपल टेंड टू नॉट कीप इट क्लीन, सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको रोज साफ कर लेना चाहिए। और अगर यूरिन में कुछ भी सिम्टम्स हैं जैसे रुकावट होना, खुल की पेशाब नहीं आना, दैट प्रीडिस्पोजेस अ पर्सन टू इन्फेक्शंस, इसलिए उसको एड्रेस करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लस कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या होती है, जिसमें के सबसे कॉमन डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर। और डॉक्टर, आज आपने हमारे लिसनर्स को यूरिनरी हेल्थ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी है। अक्सर मेन ना हेल्थ के कुछ इश्यूज पर बात करने में हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन हेल्थ में एम्बैरेसमेंट की नहीं बल्कि अवेयरनेस की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आज आप हमारे साथ पोषण की पाठशाला में जुड़े। हमारे लिसनर्स को सभी सवालों के जवाब आज आपसे मिले हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बॉडी के सिग्नल को इग्नोर नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेहत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम टाइमली ट्रीट करते हैं ना तो वो ठीक हो जाती है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे। दिस इज आरजे अंशली साइनिंग ऑफ।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
2: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
1: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
1: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
2: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
1: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
2: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए। अलंकित लिमिटेड विश्वास का नाम, विकास का साथी।
3: ब्रेक ओवर, गाना शुरू।

0: ना ऐसा लगता है जो बातें हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाते हैं, किसी कविता में सांस लेने लगती हैं। और शायद इसीलिए हर पोइट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है अल्फाजों में। और आज का दौर इंटरेस्टिंग है, यहाँ फीलिंग सिर्फ डायरीज तक लिमिटेड नहीं होती है, वो स्टेज पर आती है, माइक पकड़ती है और हजारों लोगों को एक साथ फील करा देती है। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही आवाजों का सफर जुड़ने वाला है। आज दिल शायराना में मैं आपके साथ मौजूद हूँ गीत, और आज मेरे साथ यहाँ रेडियो महारानी के स्टूडियो में बहुत सारी पोइटेस मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अमृत प्रिया है, श्वेता है, कवित्री सोनम है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमृत प्रिया, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी जो ये जर्नी है, जो पोइट्री की जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट हुई थी, कब आपने सोचा कि अब आपको लिखना चाहिए?
1: हाँ, ऐसे कोई बेसिक टाइमलाइन तो नहीं है, पर जब पहली बार मोहब्बत हुई थी जैसे सबको होती है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं थोड़ा कुछ कुछ लिखती थी।
0: आपने आपने उनको इम्प्रेस करने के लिए लिखा, उनको सुनाया था?
1: हाँ, सुनाया था।
0: तो क्या रिएक्शन था?
1: तो ही वाज वेरी हैप्पी कि वाओ, बट बाद में फिर ब्रेकअप हो गया।
0: तो ब्रेकअप पे भी लिखी थी?
1: हाँ, तो उसके बाद में पोएटिस बन गई।
0: नाइस, तो ये जो पूरा क्रेडिट आपके ब्रेकअप को जाता है आई थिंक, है ना? कि आप
1: होंगी उस मोहब्बत को जाता है जो, क्योंकि लिखना तो तभी स्टार्ट किया था ना।
0: जी जी,
1: फिर प्रोफेशन मैंने बाद में बनाया।
0: जी जी, तो श्वेता आपके पास आते हैं, आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही है एग्जैक्टली? ये
2: मेरी जर्नी जो मेन रही है वो दिल तोड़वाने के बाद रही है।
0: अच्छा जी। ये दिल तोड़वाने का सिलसिला जारी है अभी भी।
2: होता ना कि हम सामने वाले से मतलब मोहब्बत करते हैं, दिल तो आपका बीच बीच में टूट रहा होता है पर आपको पता नहीं होता, आप अपनी बातें कह ही नहीं पाते। तो जब मैं सामने वाले शख्स से अपनी बातें कह ही नहीं पाती थी हमारी वजह से, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, तो उसका जरिया मैंने फिर लिखने को चुना क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि रिलेशनशिप पे बात आ रही थी। शुरुआत मेरी।
0: जी जी, सोनम कैसे आपने स्टार्ट किया लिखना?
3: जी, मुझे शुरू से ही कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था। जैसे स्कूल्स में हिंदी की बुक है उसमें छोटी छोटी कविताएं थी, तो मैंने अपनी पहली एक शायरी लिखी थी मेरे ख्याल से 12th में, तो वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। बस मंच में मुझे 1.5 साल हुए हैं, ज्यादा नहीं।
0: तो बातें जारी रहेंगी, वक्त है गाने का, गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना में आपके साथ। गीत बनी हुई हूँ तो यहाँ हम बातें कर रहे हैं तीन पोइटेस से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि जो पोइट होता है ना, उसके वर्ड्स का एक मूड होता है। आपके अल्फाज ज्यादा किस चीज से पैदा होते हैं, क्या लगता है आपको, अल्फाज जो होते हैं, पोइट्री जो होती है वो किस चीज से पैदा होती है? ऑब्जर्वेशन से पैदा होती है या फिर आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं? जैसे आपने तो कहा कि आपके तो पर्सनल इमोशंस रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है किस चीज से पैदा होती है पोइट्री?
1: पोइट्री दो चीजों से मेरे हिसाब से पैदा होती है, या तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है या बहुत दर्द है।
0: ओके, क्या ऐसा भी होता है कि किसी और की लाइफ से भी आप कुछ ऑब्जर्व करके लिखते हैं?
1: वो होती दो इमोशंस के इर्द गिर्द है कि अगर किसी और की लाइफ में भी, या तो आप वहाँ पे दर्द देख रहे हो या वहाँ मोहब्बत देख रहे हो, दो इमोशंस ही मेनली मेरे हिसाब से होता है।
0: ओके, आपको क्या लगता है?
2: एक दायरा और है, जब हम किसी चीज को ना बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को हो, कोई इमोशन हो, आप किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी चीज से, तो वहाँ पे भी आपके इमोशंस निकलते हैं।
0: okay.
2: चाहे वो दर्द हो, तकलीफ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो।
3: जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर वो कवि या कवित्री जिसके अंदर प्रेम तत्व है, चाहे उसने किसी से प्रेम किया या नहीं किया, अक्सर हम प्रकृति को देख के प्रेम में होते हैं, या बादल, बारिश, तो हम तब प्रेम या दर्द। हमें किसी इंसान से मोहब्बत हो तभी हम लिखेंगे, किसी मनुष्य में प्रेम तत्व होगा आप तब लिख सकते।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही। तो यहाँ वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, मैं आपके साथ गीत हूँ। मेरे साथ यहाँ महफिल लगी हुई है तीन कवित्रियों की। अब बात कर लेते हैं स्टेज पोएट्री के बारे में। स्टेज पोएट्री का ना एक अलग ही प्रेशर होता है, लोग सिर्फ सुनने नहीं आते, रिएक्ट भी करते हैं कभी कभी। तो क्या लगता है जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को खत्म करती हैं या और ज्यादा बढ़ा देती हैं? क्या लगता है, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाती हैं। पहली बार ही आपको ऐसा लगा कि एक जैसे नए नए पॉइंट कवि कवित्री जाते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, बट वही वो टाइम होता है कि आपको समझना होता है कि आप सच में इस लाइन में जाने के काबिल हैं या वहाँ से क्विट करना है। और वहीं पे कई लोग समझ जाते हैं कि हमें इस बहर में आगे बढ़ना है या इस विधा में आगे बढ़ना है, हम गीत अच्छा लिखते हैं या शायरी अच्छा लिखते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा कंटेंट फॉलो करना है आगे।
0: आपको याद है वो आपका फर्स्ट मोमेंट जब आपने कोई कविता पढ़ी हो ऑडियंस के सामने और उनका रिएक्शन आया हो और आपको अच्छा लगा हो, उस वक्त कैसा लगा था?
1: एक चार पंक्तियां थी वो बिना बहर के हैं, लेकिन सबको लगी थी वो बहर में है, वो बहुत अच्छी है, अभी भी मतलब वो चल रही है। मेरे ख्याल से उस पे 41K व्यूज आए
0: जी।
1: तो वो चार पंक्तियां थी कि किसी के चेहरे का नूर छीन लेती है, सदियों से चढ़ा फितूर छीन लेती है, ये इश्क मोहब्बत आशिकी जनाब, ये इश्क मोहब्बत आशिकी जनाब, अच्छे अच्छों का गुरूर छीन लेती।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो सामने से बहुत ज्यादा आई थिंक आपको तालियां मिली होंगी, वाह वाह मिली होगी।
1: जी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कभी कभी बेबहर चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं और उन्हें अगर आप मीटर में लाना चाहोगे ना तो वो भाव खत्म हो जाता है, तो कभी कभी बिगड़ी हुई चीजें भी बहुत सुंदर होती हैं, ऐसे रहने देना चाहिए।
0: मैं इस क्वेश्चन पर भी आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं। गाने के बाद फिर से

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एम डी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड यस, आई ऑल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माई एडवाइस टूडे कम्स फॉर वुमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद द राइट पीपल। पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपका बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।

0: इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ गीत हूँ और आज यहाँ रेडियो महारानी के स्टूडियो में महफिल लगी हुई है तीन पोइटेस की। आपसे जानना चाहूंगी श्वेता, एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी लेकिन अब रिकॉर्ड भी होती है, वायरल भी होती है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ने पोइट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या थोड़ा सा सुपरफिशियल भी बना दिया है?
1: पावरफुल बनाया है, बट इसके कुछ लो पॉइंट्स भी हैं कि लोग कॉपी करके लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, उस चीज को वायरल करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी की फेमस है शायरी, या कुछ लाइनें चंद फेमस है, सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, हम अपनी आवाज में उसको फेमस करते हैं। वो होता था कि
0: और आई थिंक क्रेडिट भी नहीं देते,
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो जो उसके असली हकदार होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं।
0: अमृतप्रिया, आपसे एक सवाल है, बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
2: मैंने पहले भी कहा था, कविता दो इमोशंस पे ही है, या तो मोहब्बत होता है या दर्द होता है। तो अगर आपसे कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके दो ही रीजंस हो सकते हैं, आप दर्द पड़ रहे हैं और वो मोहब्बत में आप मोहब्बत पड़ रहे हैं और वो दर्द में है, तो वो तो अपोजिट चाहेगा ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी ऐसा तो नहीं होता, मोस्टली कनेक्ट अगर आप दिल से कोई बात कह रहे हैं तो वो दिल तक पहुंच ही जाती है।
0: एक्चुअली मेरा जो मेन सवाल है वो ये है आपसे कि अगर जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरू करें, किन कवियों को पढ़ें, कौन सी कविताएं पढ़ें?
2: वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, क्योंकि कविताओं में भी बहुत सारी फील्ड है। आप शायरा बनना चाहते हैं, कवित्री बनना चाहते हैं, आप स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको आगे देखना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे मैं पर्सनली शायरा बनना चाहती हूँ, तो मैं गजलें लिखती हूँ, मैं नज़्में लिखती हूँ, तो मैंने जहाँ से स्टार्ट की कि सबसे पहले हम बहर सीखेंगे।
0: तो आपने सबसे पहले किसको पढ़ा था?
2: बहर सीखने के लिए तो एक किताब आती है गजल की बाबत, उसमें नियम बताए होते हैं। उसके बाद फिर हमारे इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, उनको सबको पढ़ना ही है, गालिब, जमाल एहसानी साहब हैं, और भी अब तो हिंदुस्तान में ही इतने अच्छे अच्छे शायर हो गए, अहमद फराज साहब हो गए हैं, बहुत सारे नाम है, निदा फाजली जी हैं।
0: जी जी जी,
2: आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते।
0: मैं ये नोटिस करती हूँ जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों को फील करवा देते हैं वो खुद काफी चीजें छुपा कर रखते हैं, तो ऐसा होता है आपके साथ?
1: बहुत बार ऐसा, इंडिपेंडेंट वुमेन खासकर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो
0: अच्छा क्यों छुपा के रखते हैं?
1: रीजन ये है कि देखो, एज अ वुमेन ना हमें ये लगता है जब हम अपने दर्द को एक्सप्रेस करते हैं ना सामने वाले को, और जब एक बार ही रिजेक्शन मिलता है, दो बार ही मिलता है, सामने वाला नहीं समझ रहा, तो हम लोग एक शेल्टर बना लेते हैं अपने आसपास कि यार बहुत हो गया, अब या तो हम लिखने में लगा देंगे, या तो गाने सुन के बहा देंगे, रो धो के मतलब उस इमोशन को बाहर निकालेंगे, पर हम सामने वाले को नहीं बताएंगे। तो ये वाला सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है, जब आप बार बार रिजेक्ट होते हो तो फिर आपको एक एक्सेप्टेंस आती है। मेरा मैं एक बात कहती हूँ कि हर इंसान, मतलब फेलियर आ रही होती है ना, आप बार बार फेल होते हो किसी चीज में, चाहे किसी भी चीज में, आपकी लाइफ में ना एक सुबह आती है, सूरज आता है, वो आपको ये सिखाता है कि यार इसके बाद ना आपकी शुरुआत अलग होगी, अब आपको इस तरीके से सोचना है या इस तरीके से जिंदगी जीनी है, ये रीजन है सबसे।
0: कभी किसी लाइन को लिखने के बाद आपको ऐसा लगा हो शायद ये मुझे स्टेज पर पढ़नी नहीं चाहिए? आपको लगा सोनम? लगा
2: बहुत बार होता है, तो
1: पहली बार लिखा था, मतलब पहली जो कविता थी मेरी वो मेरी देशभक्ति पे थी, तो मुझे याद नहीं है, उसे मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं। मैं भी रिसेंट में मुझे एक माइकॉन में इनवाइट किया गया था, बल्कि तो वहाँ पे मैंने नई नई रचना लिखी थी, देशभक्ति की था वो, और वो मेरी जुबान पे चढ़ा भी नहीं था, तो मुझे फोन पकड़ के पढ़ना पड़ रहा था, और वो मतलब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम क्या सुन रहे हैं।
0: फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई इसको सुनाने की, कहीं
1: वहां मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन मैं खुश भी थी, मैंने कहा चलो मुझे पता चल गया कि मेरा एरिया जो है वो श्रृंगार है, प्यार है, वियोग है, वही मुझे लिखना है, मैं अगर कुछ और नया ट्राई करूंगी तो वहाँ नहीं होगा, तो मैं डिसअपॉइंट कम हुई, मैं खुश ज्यादा हुई लोगों का रिएक्शन देख। तो पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ, वरना हर इवेंट मेरा ए बन जाता है।

एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अका गुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

0: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। आपकी रचनाओं पर आ जाते हैं हम, आपकी जो रचनाएं हैं वो हम चाहेंगे आज डेफिनेटली आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं। शुरुआत हम प्रिया से करते हैं। प्रिया, आपकी कोई रचना?
1: जो मैं एक गजल सुना देती हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: मैंने भी रिसेंट में ही लिखी है, ये पढ़ी भी नहीं है। सुनेगा कि क्या तेरे इश्क में करना सीखे, जीना सीखे या कि मरना सीखे। क्या तेरे इश्क में करना सीखे, जीना सीखे या कि मरना सीखे। कुछ तो संगत का असर हो तेरी, हम भी बातों से मुकरना सीखे।
0: क्या बात है।
1: कुछ तो संगत का असर हो तेरी, हम भी बातों से मुकरना सीखे। ऐसे गिर गिर के मैं चलती हूँ रोज, जैसे बच्चे यहाँ चलना सीखे। लोगों पे हंसने से बेहतर है हम, लोगों पे हंसने से बेहतर है हम, लोगों के साथ में हंसना सीखे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: अपने इन आंसुओं को समझाओ, अपने इन आंसुओं को समझाओ, बहने से अच्छा है उबलना सीखे।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। श्वेता, आपके पास आते हैं, आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें।
2: बिल्कुल, मैं सेल्फ लव पे बोलना चाहूँगा। हर इंसान को अपने आप से प्यार ज़रूर करना चाहिए। तो जब मैंने खुद से प्यार किया दोबारा, तो मैंने उसमें लिखा था कि मैं जब भी लिखूंगी अपने बारे में खूबसूरत दास्तान लिखूंगी, मैं जब भी लिखूंगी अपने बारे में खूबसूरत दास्तान लिखूंगी, अधूरी ही सही मगर हर सवाल का मुकम्मल जवाब लिखूंगी। अपना हसीने आलम ना सही, अपने हर हालात लिखूंगी, मैं लिख अगर पाई तो अपनी ही कलम से अपना इतिहास लिखूंगी।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत
2: शुक्रिया।
0: सोनम, आपके पास आते हैं, आपकी भी रचना।
3: मैं शारदे को प्रणाम करती हूँ सर्वप्रथम, उसके बाद अपने आपको निवेदन करती हूँ चार पंक्तियाँ।
0: बिल्कुल।

0: तो सुनाऊं किसे सनम, जब तुम ही नहीं तो ये सुनाऊं किसे सनम।
1: तो आप तीनों लोगों से बात करके बहुत मजा आया और आई होप आपकी जो बातें हैं वो भी आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी होंगी ऑलमोस्ट। थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू अगेन। तो ये था आज का शो, आज दिल शायराना मैं आपके साथ गीत हूँ। तो हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: एक ऐसा घर जहां लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूं, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूं गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहां प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हां, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में हमेशा अच्छा करे, और इसीलिए उसकी पढ़ाई से लेकर एक्टिविटीज तक वो सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर देते हैं। लेकिन क्या हर चीज प्लान करना जरूरी है? हाय, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मीना खन्ना मैम, जो कि एक एडुकेशन लीडर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम मैम।
1: थैंक यू पलक।
0: मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को कभी खुद एक्सप्लोर कर देना भी हेल्दी पेरेंटिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है?
1: बिल्कुल। पेरेंटिंग का मतलब बच्चे की पूरी लाइफ प्लान करना नहीं, बल्कि उसे लाइफ के लिए तैयार करना है। हर चीज बताने और कराने की बजाय उसे खुद चूज, एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने का मौका दें। कभी कभी गलती भी करने दें, गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बच्चा ब्लॉक से कुछ बना रहा है या पजल बना रहा है, तो डायरेक्शंस दे सकते, ट्राई करो ये वाला पीस कहाँ फिट हो सकता है। इससे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, और जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। पेरेंट का रोल है गाइड करना, हर चीज को कंट्रोल करना नहीं। हम बच्चों को रास्ता साफ कर सकते हैं, लेकिन हर कदम उसके लिए चल नहीं सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: plan today.
1: Peace tomorrow!

0: देखो वो तुमसे कितना अच्छा कर रहा है। पेरेंट्स के लिए शायद ये एक सिंपल कंपैरिजन हो, लेकिन बच्चा इस सिचुएशन को कैसे लेता है वो मैटर करता है। मैम, छोटी एज से ही कंपैरिजन का बच्चे के कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
1: बार बार कंपैरिजन बच्चे के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। बच्चा अपनी प्रोग्रेस देखने के बजाय खुद को दूसरों से मेजर करना शुरू कर देता है, इसलिए बच्चे की तुलना किसी और से करने के बजाय उसकी खुद की प्रोग्रेस से करें। जो तुमने कल ड्राइंग बनाई थी, आज की ड्राइंग उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इससे बच्चा समझता है कि लर्निंग एक जर्नी है, कॉम्पिटिशन नहीं। वह अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को नोटिस करेगा और उसको अप्रिशिएट करना सीखेगा। बच्चे को दूसरे बच्चे से नहीं, उसके कल वाले वर्जन से कंपेयर कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: रोज लग जाएंगे, मत करो।

0: कभी कभी बच्चा बार बार एक ही बिहेवियर रिपीट करता है और पेरेंट कह देते हैं कि इसको कुछ नहीं, बस अटेंशन चाहिए। मैम, क्या बच्चे के बिहेवियर को जज करने से पहले उसके पीछे के इमोशंस समझना जरूरी है?
1: मैं हमेशा कहती हूँ, एवरी बिहेवियर हैज अ पैटर्न एंड उस पैटर्न को आपको समझना है, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज। हर बार बच्चा जब कोई बिहेवियर दिखाता है तो हमें देखना है कि उसके पीछे कौन सा इमोशन है या क्या पैटर्न बना है। कभी बच्चे टायर्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनसिक्योर हैं, तो वो बिहेवियर के थ्रू अपनी जरूरत बताते हैं। लेकिन कभी कभी वो हमारे रिस्पॉन्स से सीखते हैं कि ऐसा करना अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल गए और बच्चे ने खूब जोर जोर से रो करके हल्ला मचाया और आपने वो चीज दिला दी, तो बच्चे ने सीखा मैं ऐसे रोऊंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी। इसलिए बिहेवियर और रीजन को डिकोड करें और अपने बच्चे को बेहतर जानें। बच्चे के बिहेवियर को सिर्फ करेक्ट मत कीजिए, उसके पैटर्न को देखिए और डिकोड कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

0: चलना ओ सनम।
1: सिनेमा का कैप्सूल। कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

0: मार्क्स, ट्रॉफीज, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम बच्चों की सक्सेस को इन्हीं चीजों से मेजर करने लगते हैं, लेकिन क्या सक्सेस की डेफिनेशन इतनी ही है? मैम, आपके हिसाब से एक ट्रूली सक्सेसफुल चाइल्ड कैसा होता है?
1: मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एज अ मदर एंड एजुकेटर, मेरे लिए सक्सेसफुल चाइल्ड वह नहीं है जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। सक्सेसफुल बच्चे वो हैं जो लाइफ को हैंडल करना सीख रहे हैं, जो अपनी फीलिंग्स को पहचान सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हेल्प मांग सकते हैं, नो सुनकर पूरी तरह टूटते नहीं और फेलियर के बाद भी कोशिश कर सकें, दूसरे की फीलिंग को समझ सके, अपनी बात रेस्पेक्टफुली रख सके और अपने डिसीजन लेना धीरे धीरे सीखे, और सबसे महत्वपूर्ण है उसे यह विश्वास हो कि आई एम वर्थ इट एंड आई कैन अचीव व्हाट आई वांट।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू पलक, इट वॉज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू रेडियो महारानी।
0: लिसनर्स, पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को सक्सेसफुल बनाने की जर्नी नहीं है, बल्कि उसे कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और इमोशनली सिक्योर बनाने की भी जर्नी है। मैं हूँ आरजे पलक, फिर मिलेंगे खास मुलाकात में एक नए टॉपिक और एक खास मुलाकात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूँ आरजे पलक और ये है फिल्मी फ्लेवर। लेकिन बातें आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: plan today.
1: Peace tomorrow!
2: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
3: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
4: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
3: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
3: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
4: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
3: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
4: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए। अलंकित लिमिटेड विश्वास का नाम, विकास का साथी।
0: ब्रेक ओवर, गाना शुरू।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अगर आपने अल्फा अभी तक नहीं देखी और आप इसको देखने का प्लान बना रहे हो ना, तो पहले मेरी बात सुन लो। आपकी ना उम्मीदें इसको देखने के बाद थोड़ी लो हो सकती हैं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि फिल्म को स्पाई थ्रिलर के नाम पे प्रेजेंट किया गया है, लेकिन ऑनेस्टली स्पाई थ्रिलर से ज्यादा ये फैमिली ड्रामा लगती है, क्योंकि स्टोरी में वो ग्रिप नहीं है जो आपको स्क्रीन से बांध के रखे। और अगर आपने धुरंधर देखी है ना, आप इसको देखने के बाद तुरंत कंपैरिजन कर लेंगे, और उस कंपैरिजन में अल्फा काफी वीक पड़ती है। इस मूवी में स्टाइल है, एक्शन है, बिग लोकेशंस भी हैं, बस स्टोरी में वो बात नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। इस मूवी में ऋतिक रोशन का रोल भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा। और अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूं, तो मेरे लिए अल्फा डिसअपॉइंटिंग वॉच रही। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप अपना रिव्यू मुझे बता सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप करके। नंबर है 9654896896। मैं रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 9654896896। चलिए, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस गाने के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ पेन किलर है। तो इन चीजों का ख्याल रख के हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।

0: कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।
1: रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा एक कन्फेशन करूं, कुछ मूवीज ना थिएटर में देखने का प्लान हम बनाते हैं, लेकिन फिर टिकट का प्राइस देख के हम बोलते हैं ना कि यार नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, है ना, जब टीवी पे आएगी तब देख लेंगे। तो इसी को ध्यान में रख के मैं आपको एक मूवी सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपसे धमाल 4 थिएटर में मिस हो गई थी तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद और जावेद वाली धमाल 4 अब 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म को थिएटर्स में मिक्स्ड रिस्पांस मिला था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि धमाल फ्रेंचाइज की ना ये अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। अब आप देख रहे हैं कि जिस मूवी को देखकर हमें लगता है कि उतनी खास नहीं रही, वही बैकग्राउंड में धमाल मचा रही होती है। तो अब आप इस मूवी को घर पर बैठ के देख सकते हैं। तो धमाल 4 आपकी OTT वॉच लिस्ट में अगर नहीं है तो इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए वक्त हो गया है एक गाने का, और गाने के बाद बात करेंगे एक नए ट्रेलर और टीजर के बारे में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में कहीं छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए, लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है, ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा मार्वल फैंस, एक सवाल है आपके लिए। अगर एवेंजर्स एंड गेम दोबारा थिएटर में लगे तो क्या आप फिर से वही इमोशनल डैमेज लेने थिएटर जाओगे? क्योंकि एंड गेम एक बार फिर बिग स्क्रीन पर वापस आ रही है, लेकिन इस बार नाम है एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर, और मार्वल स्टूडियो ने इसे री रिलीज के लिए एक नया ट्रेलर भी रिवील किया है ताकि फैंस को वो पुराना एक्साइटमेंट दोबारा फील हो। और इमेजिन करो कि थिएटर डार्क हो, स्क्रीन पर एवेंजर्स का लोगो आए और बैकग्राउंड में वही फैमिलियर म्यूजिक, पुरानी मेमोरीज एकदम फ्लैशबैक में आ जाएंगी ना। और ये फिल्म 25th ऑफ सितंबर को आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एंड गेम का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी अब डिस्कशन में है, क्योंकि रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर उसे ओवरटेक कर लिया था। मतलब मार्वल फैंस के लिए ना ये सिर्फ री रिलीज नहीं बल्कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कॉम्पिटिशन और फुल थिएटर एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे बताइए कि एंड गेम दोबारा थिएटर में ही देखना पसंद करोगे या फिर इसको घर पे बैठ के वही पुरानी वाली वाइब के साथ रिक्रिएट करना पसंद करोगे? चलिए वक्त हो गया अब एक गाने का। गाने के बाद बात करेंगे एक ऐसे गाने की जो आजकल काफी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: यार रिलेशनशिप में फाइट तो छोटी सी बात पे हो जाती है, लेकिन असली टैलेंट तो तब है जब कोई सॉरी बोल के मना भी ले, है कि नहीं? और लगता है इस फीलिंग को नेहा कक्कर और महेंद्र बुट्टर ने अपने पंजाबी ट्रैक सॉरी सॉन्ग में पकड़ लिया है। गाने की स्टोरी भी बड़ी क्यूट सी है। छोटी सी बात पे कपल की फाइट हो गई और मैडम को रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि हम लड़कियों की आदत होती है छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने की। और अब फोन पिक करवाने से लेकर वीडियो कॉल तक पूरा मनाने का मिशन स्टार्ट हो चुका है। नेहा अपने अपसेट पार्टनर को मनाने के लिए सॉरी बोल रही हैं, फ्लावर्स लेकर घर के बाहर आने तक का प्रॉमिस कर रही हैं। ऐसा भी करती हैं क्या लड़कियां? मुझे तो नहीं लगता। मतलब ईगो गई तेल लेने, रिलेशनशिप बचाना जरूरी है। और सोशल मीडिया पर भी इसका ट्रेंड काफी क्यूट सा चल रहा है। गर्ल्स भी और बॉयज भी इस ऑडियो पर रील्स बना रहे हैं, अपनी अपनी रिलेशनशिप वाली सिचुएशन को इसके साथ परफेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश जारी है। और वैसे सच बताओ, आप फाइट के बाद पहले सॉरी बोलते हो या आपका पार्टनर? और मुझे पता है इसके मोस्ट ऑफ द आंसर यही होंगे कि हम क्यों सॉरी बोले, उसने गलती करी है तो वही सॉरी बोलेगा, वही। और उसने गलती नहीं करी है तो भी वही सॉरी बोलेगा, ऐसा मैं अक्सर सुनती हूँ। चलिए अब इस गाने की मैंने बात कर दी है तो सुनाऊं आपको यही सॉरी सॉन्ग। गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड अपडेट की। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: फैशन का भी ना अपना एक अलग ही गेम है। कुछ लोग आउटफिट पहनते हैं और कुछ लोग आउटफिट को इवेंट बना देते हैं। और अभी हाल ही में करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर द ट्रेटर्स सीजन 2 से अपना एक लुक शेयर किया है। और भाई सच बताऊं, पैलेस की रॉयल सेटिंग में उनका आउटफिट देखकर ना एक चीज तो मैं जान गई कि करण जौहर ने अपनी सिंपल एंट्री का कंसेप्ट कब का रिटायर कर दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि ट्रेटर्स से बवाल मचाया और मैंने उन्हें मेरे कपड़ों से डराया। अब आप देख रहे हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उन्होंने इस पोस्ट पे हरियाणवी बीट दी है। जी हाँ, हरियाणवी गाना लगाया था उन्होंने अपनी इस पोस्ट पे। अब आप देख रहे हो, पोस्ट एकदम क्लासी, गाना हरियाणवी और कैप्शन एकदम राइम करता हुआ, और मुझे ये कॉम्बिनेशन काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। अगर आपने करण जौहर का ये लुक देखा है तो मुझे बताइएगा कि आउटफिट ने इम्प्रेस ज्यादा किया या हरियाणवी गाने ये जो लगा रहे हैं वो ज्यादा इम्प्रेसिव है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का। गाने के बाद बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग फिल्मी अपडेट की। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर calling.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: पंजाबी मूवीज की ना एक बात मुझे बहुत पसंद है, कहानी चाहे कितनी सीरियस हो बीच बीच में एंटरटेनमेंट का तड़का जरूर मिलता है। और अब एक ऐसी ही पंजाबी फिल्म आ रही है जिसका नाम है लुट मुबारक। स्टोरी है शुभ की, जो एक सिंपल और ऑनेस्ट लड़का है, लेकिन जब उसकी माँ पर एक करप्ट जूलर गलत इल्जाम लगा देता है और पूरी फैमिली की इज्जत पे बात आ जाती है ना, तो शुभ की पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। अपने परिवार की डिग्निटी वापस लाने के लिए वो क्राइम और ग्रीड की डेंजरस दुनिया में एंटर करता है और उसका साथ देती है

डिटेक्टिव नियामत, और इस मूवी के लीड रोल में है हरीश वर्मा और कनिका मन। मतलब इस मूवी में फैमिली इमोशन भी है, ड्रामा भी है, क्राइम भी है और कॉमेडी का तड़का भी है। और ये फिल्म आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 25 सितंबर को। अब देखना ये है कि शुभ अपनी फैमिली की इज्जत वापस लाता है या क्राइम की दुनिया उसे बदल देती है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अगर आपको मिस्ट्री, रोमांचक में सस्पेंस और ट्विस्ट पसंद है ना, तो द विस्पर मैन शायद आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना इससे। 28th of August को रिलीज हुई ये फिल्म बच्चों के किडनैपिंग और मर्डर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी में सस्पेंस भी बना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लूज इतने ऑब्वियस हैं कि मिस्ट्री जल्द ही समझ आने लगती है। और स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो ये एवरेज है, पेसिंग थोड़ी अनइवन है और कैरेक्टर्स भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लिखे गए। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी ठीक ठाक रही है। तो ओवरऑल मूवी का अगर मैं रिव्यू दूं तो बुरी नहीं है, लेकिन प्रिडिक्टेबल जरूर है। अगर वन टाइम वॉच के लिए आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है, तो आप बिल्कुल इस मूवी को देख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इस मूवी को देख ली है तो आप इसका रिव्यू मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बता सकते हैं। नंबर है 9654896896। मैं दोबारा बोल देती हूँ, नंबर है 9654896896। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: चलना ओ सनम।
1: 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

केसेस ऐसे होते हैं ना, जहां सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि सच क्या है, बल्कि सवाल ये होता है कि लोग सच मानेंगे किसे। और इसी सवाल के साथ आया है द दायरा का ट्रेलर। मेघना गुलजार की ये इंटेंस क्राइम थ्रिलर, जिसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज नजर आने वाले हैं, ट्रुथ जस्टिस और परसेप्शन के बीच की एक इंटरेस्टिंग बैटल दिखाई गई है इस ट्रेलर में। और इसको देखकर लगता है कि कहानी में चॉइसेस भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और शायद हर कैरेक्टर की ना अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है। अब असली सस्पेंस तो फिल्म देखने के बाद ही खुलेगा। और ये रिलीज हो रही है 18th of September को। और अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। चलिए, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: plan today. Please tomorrow.
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
3: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
2: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
2: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
3: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
2: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
3: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए। अलंकित लिमिटेड विश्वास का नाम, विकास का साथी।
0: ब्रेक ओवर, गाना शुरू।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: लगता है बॉलीवुड फिर से हमें याद दिलाने वाला है कि रिश्तों में की और का कौन है ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि खबर है कि कियारा आडवाणी को की एंड का पार्ट टू की फीमेल लीड के लिए अप्रोच किया गया है और मेकर्स एक ताजा स्टोरी पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये पहली फिल्म की कहानी को सीधे आगे बढ़ाने वाली सीक्वल नहीं होगी। लेकिन होल्ड ऑन प्लीज, कियारा ने अभी फिल्म ऑफिशियली साइन नहीं की है, फिलहाल सिर्फ बातें चल रही हैं। तो अब अगर कियारा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार रिलेशनशिप डायनेमिक्स में क्या नया देखने को मिलता है। चलिए अब एक गाना हो जाए और गाने के बाद मिलते हैं फिल्मी फ्लेवर में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों

इफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू. डॉक्टर कॉलिंग.

0: जाए पर तू मेरी समझा कर।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: कभी कभी ना लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड लगता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब प्यार, दोस्ती और लाइफ तीनों मिलकर आपकी सारी प्लानिंग की ऐसी तैसी कर देती हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा डोंट बी शाई में। ये एक यंग अडल्ट रोम कॉम है जिसमें चार फ्रेश फेसेस जिनका नाम है आरुषि बजाज, बियांका अरोड़ा, पीयूष खाती और अंश दुग्गल, और ये चारों नए चेहरे नजर आएंगे लीड रोल्स में। और ये कहानी है दोस्ती, पहला प्यार, हार्ट ब्रेक और ग्रोइंग अप के उस फेस की जहां खुद को समझना ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और फिल्म को आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट की एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस ने बैक किया है और श्रीति मुखर्जी ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया है। तो अगर आपको भी कॉलेज वाली फ्रेंडशिप रोमांस और थोड़ा सा कमिंग ऑफ एज ड्रामा पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए हो सकती है। और ये मूवी 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए अब एक गाना हो जाए और गाने के बाद मिलते हैं फिल्मी फ्लेवर में, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: आज के फिल्मी फ्लेवर में इतना ही। मैं हूँ अजय पलक और अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आप जानते ही हैं यार, आज जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह, तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द में बहुत ताकत है, जो किसी बच्चे के लिए बंद दरवाजों की चाबी भी बन सकता है और उसकी पूरी दुनिया का विनाश भी। एक टीचर चाहे तो किसी मासूम के सपनों को पंख देकर उसे आसमान छूने की ताकत दे दे, और अगर चाहे तो उसके आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ दे कि वो ताउम्र खुद को समेट ना पाए। ये सिर्फ एक सर की कहानी नहीं है, ये उस पतली सी डोर की दास्तान है जो एक बच्चे को आबाद भी कर सकती है और पूरी तरह बर्बाद भी। अभी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही टीचर आया था, संदीप सर। क्या उन्होंने अभय को सवारा या फिर उसे हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया? उन्होंने अभय की कॉपी के पन्ने पर ऐसा क्या लिखा था जिसने एक भटकते हुए लड़के के कदमों को हमेशा के लिए रोक दिया? क्या एक टीचर सच में किसी इंसान की तकदीर का रुख मोड़ सकता है? उस आखिरी मुलाकात में संदीप सर ने अभय को ऐसा कौन सा राज बताया था जिसे जानने के बाद उसकी भी रूह कांप गई? नमस्कार, मेरा नाम सपना है और आ गई हूँ आपको अपनी कहानियों की दुनिया में ले जाने, जहाँ संदीप सर हैं, अभय है और आपका और मेरा बचपन है। आज की इस कहानी का शीर्षक है अधूरा नहीं था मैं। खैर, अधूरा कोई नहीं होता तब तक जब तक उसे पूरा करने के लिए एक सही टीचर नहीं मिल जाता। आज इसी अधूरेपन से पूरे होने तक की इस दास्तान को सुनते रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि

हर स्कूल में एक ऐसा टीचर जरूर होता है जिसका नाम सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, बल्कि उनका नाम तो बच्चों की यादों में लिखा जाता है। कभी किसी की डांट के साथ, कभी किसी की सलाह के साथ, और कभी एक वाक्य के साथ जिसने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी होती है। अभय की जिंदगी में भी ऐसा ही एक टीचर था। नाम था संदीप सर। अभय जब तक 11th स्टैंडर्ड में था, तब तक उसे पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। वो उन बच्चों में से था जो क्लास में मौजूद तो रहते थे, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता था। किताब सामने होती थी, मगर ध्यान वो तो खिड़की के बाहर होता था। नोटबुक खुली होती थी, मगर पन्ने हमेशा खाली। और एग्जाम्स के दिनों में उसे हमेशा यही लगता था कि अभी बहुत टाइम है। उसके पापा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि अभय अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह बेखबर रह सके। पापा अक्सर कहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना, लेकिन अभय को खुद नहीं पता था कि उसे करना क्या है। उसके दोस्तों के अपने सपने थे, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता था, कोई विदेश जाने की बातें करता था, तो कोई पापा का बिजनेस संभालना चाहता था। पर अभय वो तो बस इतना जानता था कि उसे किसी चीज में पीछे नहीं रहना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। 11th स्टैंडर्ड के शुरुआत में उनके स्कूल में एक नए टीचर आए, संदीप सर। वो हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वो तो बच्चों को पढ़ते थे। किस बच्चे की आंखों में नींद है, किस बच्चे की नोटबुक में अचानक लिखावट खराब हो गई, कौन बच्चा लगातार चुप रहता है और कौन हर बात पर हंसता है ताकि कोई उसकी परेशानी ना समझ सके, उन्हें ये सब दिखाई देता था। पहले दिन उन्होंने क्लास में कोई लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, उन्होंने तो बोर्ड पर बस एक लाइन लिखी, जिंदगी में सबसे खतरनाक स्थिति असफल होना नहीं है, बल्कि कोशिश ना करना है। अभय ने उस लाइन को पढ़ा और फिर अपनी नोटबुक बंद कर दी। उसे लगा एक और मोटिवेशनल टीचर, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने संदीप सर की और अभय की सारी धारणाएं बदल दी। क्या हुआ था ऐसा, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।

संदीप सर की पहली क्लास में ही उन्होंने बोर्ड पर कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर अभय को लगा कि चलो एक और मोटिवेशनल स्पीच हमारे सामने आने वाली है। पर अब जो उसके सामने होने वाला था वो उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। कोई बड़ा लेक्चर नहीं, ना ही कोई बड़ी सी स्पीच, बस कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि संदीप सर हर बच्चे के चेहरे पर देख कर कर रहे थे। कुछ ही हफ्तों में अभय को समझ आने लगा कि संदीप सर बाकी टीचर्स से कुछ अलग थे। वो किसी भी बच्चे को उसके मार्क्स से नहीं पहचानते थे। अभय के मार्क्स हमेशा पासिंग मार्क्स से 2-3 नंबर ही ज्यादा हुआ करते थे। 11th स्टैंडर्ड के पहले यूनिट टेस्ट में हिंदी में उसे सिर्फ 41 अंक मिले। पेपर वापस करते समय संदीप सर ने उसके नंबर नहीं बताए, उन्होंने तो बस उसकी एग्जाम शीट पर लाल पेन से सिर्फ एक सेंटेंस लिखा, तुम्हारे उत्तर गलत कम हैं, अधूरे ज्यादा हैं। अभय इस सेंटेंस को लेकर कई दिनों तक सोचता रहा, क्योंकि पहली बार किसी टीचर ने उसे ये नहीं कहा था कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, उन्होंने कहा था अधूरा है। और अभय ये समझ गया था कि अधूरे को पूरा किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद संदीप सर ने अभय को स्कूल के बाद रोक लिया। जैसा कि अभय सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई डांट और ना ही कोई शिकायत। बस उसकी नोटबुक सामने रख कर सर ने उससे पूछा कि वो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाता। अभय के पास कोई जवाब नहीं था। उसने वही कहा जो अक्सर ऐसे बच्चे कहते हैं, उसे पढ़ाई समझ नहीं आती। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। उसे डर लगता था, डर कि अगर उसने पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाया तो, डर कि अगर बाकी बच्चों जितना वो कभी नहीं कर पाएगा तो, डर कि शायद उसमें कोई खास टैलेंट नहीं हो तो। उस डर को अभय ने आलस का नाम दे रखा था। संदीप सर ने उस दिन कोई सजेशन नहीं दिया, उन्होंने बस उसकी बात सुनी काफी देर तक। और शायद यही वो पहला दिन था जब अभय को लगा कि कोई बड़ा आदमी उसकी प्रॉब्लम्स को हल करने से पहले उसे समझना चाहता है। उस दिन के बाद कुछ बदलना शुरू हुआ, बहुत थोड़ा। अभय ने रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना शुरू किया। संदीप सर ने उसे कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ इतना करो कि जो आज नहीं आता उसे कल तक थोड़ा बेहतर कर दो। अभय के लिए ये एक नया तरीका था। उसे पहली बार समझ आया कि मेहनत हमेशा घंटों में नहीं होती, कभी कभी मेहनत सिर्फ रोज वापस बैठने का नाम होती है। समय बीता और अभय पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ, पर कभी कभी ये थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। पर कभी कभी इस थोड़े से बदलाव के लिए ज्यादा नहीं बल्कि एक ईमानदार कोशिश की जरूरत होती है, जैसा कि अब अभय कर रहा था।

0: दिन भर कस्टमर्स का इंतजार करते हैं और रात को थके हुए घर लौटते हैं। उसने ये भी लिखा कि बचपन में उसे लगता था कि पापा सिर्फ दुकान चलाते हैं, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है कि वो दुकान वास्तव में उनके सपनों का सहारा है। संदीप सर ने ये एस्से सबके सामने पढ़ा और पहली बार अभय को ये एहसास हुआ कि शायद उसमें कुछ तो है। पर कंपटीशन में उसे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, ना ही सेकंड, उसे थर्ड प्राइज मिला। लेकिन संदीप सर ने उसे प्राइज देते समय सिर्फ इतना कहा, तुम लिख सकते हो, अब इसे छोड़ना मत। ये एक वाक्य अभय के अंदर कहीं गहरा उतर गया। उस दिन से अभय लिखने लगा, डायरी में, कॉपी के लास्ट पेज पर, बस में सफर करते हुए, कभी मोबाइल के नोट्स में। उसने अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू किया, चाय वाले की आवाज, पापा के पुराने रेडियो की खरखराहट, माँ का सुबह रसोई में बर्तन रखना, बारिश के बाद दुकान के बाहर जमा पानी। उसे लगने लगा कि हर सिंपल चीज के पीछे एक कहानी होती है, और शायद यही संदीप सर की सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने अभय को सिर्फ एक टॉपिक नहीं सिखाया था, बल्कि उन्होंने तो अभय को देखना सिखाया था।
1: कहानी अभी बाकी है,
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

0: देखते ही देखते अभय अब 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आ चुका था। अब उसके ऊपर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बढ़ चुका था। यह अलग बात है कि अब वो पहले से थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी भी उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। और फिर एक दिन उसके पापा की दुकान में चोरी हो गई, लाखों का नुकसान हुआ। देखते ही देखते घर का माहौल बदल गया। पापा अब चुप रहने लगे थे। माँ खर्चों की लिस्ट को बार बार देखने लगी थी। अभय ने पढ़ाई छोड़कर दुकान संभालने की बात सोची। उसे लगा कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। वो कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। संदीप सर ने उसे फोन किया, अभय ने फोन नहीं उठाया। दूसरे दिन भी नहीं और तीसरे दिन भी नहीं, पर फिर भी संदीप सर उसके घर नहीं गए, क्योंकि वो अभय पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहते थे। बस स्कूल के पियोन के हाथ एक कागज भिजवाया, जिस पर लिखा था, मुश्किल समय में पढ़ाई छोड़ना समाधान नहीं होता, बल्कि उस समय में सही फैसला लेना समाधान होता है। पहले आओ, बैठकर बात करते हैं। अभय अगले दिन ही स्कूल गया। उस दिन वो पहली बार अपनी टीचर के सामने रोया, बिना किसी शर्म के, और संदीप सर ने भी उसे रोने दिया। कभी कभी बच्चों को सलाह से पहले एक सेफ जगह चाहिए होती है। उस दिन भी वही हुआ। संदीप सर ने उसे समझाया कि परिवार की चिंता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता डर के आधार पर तय करना सही नहीं है। उन्होंने अभय से ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता। उन्होंने बस इतना कहा कि मुश्किल समय में जो चीज हमारे हाथ में है उसे मजबूत रखना चाहिए। और अभय के हाथ में उस समय उसकी पढ़ाई थी। उसने वापस पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे थे, अभय अपनी पढ़ाई को और ज्यादा वक्त देने लगा था। और फिर आया वो दिन, जिस दिन का हर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार होता है।
1: कहानी अभी बाकी है।

तरह से कांप रहे थे। वो बहुत नर्वस था और तभी उसे संदीप सर की एक बात याद आई। एग्जाम ये तय नहीं करता कि तुम कितने काबिल हो, वो तो सिर्फ ये बताता है कि आज तुमने कितनी तैयारी की है। उसने पेपर लिखना शुरू किया। 3 घंटे बाद जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग सी शांति थी। उसे नहीं पता था कि कितने नंबर आएंगे, लेकिन उसे ये पता था कि उसने इस बार खुद से भागने की कोशिश नहीं की। रिजल्ट आया, स्कूल में सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर अभय बहुत नर्वस था। अपना रिजल्ट देखते हुए वो पसीने में भीग चुका था, लेकिन जब उसे अपनी परसेंटेज पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उसे

कि वो कोई सेटल्ड जॉब ढूंढे। दोनों की चिंता अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। अभय एक बार फिर उलझ गया। इस बार संदीप सर ने उसके लिए फैसला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उससे कहा कि किसी पेशे को चुनने से पहले उसके बारे में जितना हो सके उतना जानो। अभय ने जर्नलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, इंटर्नशिप खोजी, छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे और कई सोशल प्रोग्राम्स में वॉलंटियर की तरह काम किया। और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि उसका मन शब्दों और लोगों की कहानियों में है। कॉलेज के बाद उसे एक छोटे मीडिया हाउस में नौकरी भी मिल गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। उसने काम सीखा, गलतियां की, डांट भी खाई, रातों को देर तक काम किया, कई बार नौकरी छोड़ने का भी मन हुआ, लेकिन हर बार उसे संदीप सर की एक बात याद आई। जिस काम में शुरुआत में तुम्हें छोटा महसूस होता है, वही काम कभी कभी तुम्हें बड़ा बनना सिखाता है।

कॉलेज पूरा होने के बाद अभय को एक छोटे से मीडिया हाउस में नौकरी मिल गई। पैकेज बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभय को काम सीखने में बहुत मजा आने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, अभय अब एक जर्नलिस्ट बन चुका था। छोटी खबरों से शुरुआत करके वो धीरे धीरे बड़ी कहानियां लिखने लगा था। ऐसी कहानियां जिनमें बड़े नाम नहीं होते थे, लेकिन बड़े स्ट्रगल्स होते थे। रिक्शा चलाने वाला पिता, सरकारी स्कूल की लड़की, दुकान चलाती विधवा माँ, दूर गांव से शहर आए मजदूर। अभय को लगता था कि वो जो लिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं संदीप सर की शिक्षा मौजूद है। उन्होंने उसे सिखाया था कि किसी इंसान को उसकी परिस्थिति से पहले इंसान की तरह देखना। लगभग 10 साल बाद अभय उसी स्कूल के सामने खड़ा था। स्कूल की बिल्डिंग अब बदल चुकी थी, क्लासेस की दीवारों पर नए रंग थे, गेट भी नया लग चुका था, लेकिन सुबह की घंटी। वो तो वैसी ही थी। अभय संदीप सर से मिलने आया था, पर सर उनके बालों में तो अब सफेदी आ चुकी।

की थी और चाल थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी वही शांति थी। अभय उन्हें देखकर तुरंत उनके पैर छूने के लिए झुक गया। सर ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। अभय के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसे लगा कि कुछ रिश्तों में शब्द हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली, उसकी पहली किताब। बुक के फ्रंट पेज पर उसका नाम था और अंदर पहले पन्ने पर उसने लिखा था उस गुरु के नाम जिसने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे क्या बनना है, बल्कि ये भरोसा दिलाया कि मैं जो भी बनूंगा अपनी मेहनत से बन सकता हूं। संदीप सर काफी देर तक उस पन्ने को देखते रहे और फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने किताब बंद कर दी। अभय को बहुत आश्चर्य हुआ। सर ने बस इतना समझाया कि टीचर की असली कमाई किसी किताब में छपा नाम नहीं होती, बल्कि उसकी असली कमाई वो दिन होता है जब उसका कोई स्टूडेंट उनसे आगे निकलकर किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर बनाता है। उस मुलाकात के बस कुछ महीनों बाद ही संदीप सर का निधन हो गया। अभय अंतिम संस्कार में पहुंचा। बहुत से लोग थे वहां, कुछ एक्स स्टूडेंट्स, कुछ कलीग्स, कुछ पड़ोसी और कुछ फैमिली के लोग। हर किसी के पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ था। किसी ने कहा उन्होंने मुझे नौकरी दिलवाई थी, तो किसी ने कहा उन्होंने मेरी पढ़ाई बचाई थी, किसी ने कहा कि उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोका था। और ये सब अभय चुपचाप सुनता रहा। उसे समझ आया कि संदीप सर ने सिर्फ उसकी ही जिंदगी नहीं बदली थी, उन्होंने तो ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी को एक छोटा सा धक्का दिया था। इतना छोटा कि उस समय किसी को इसका महत्व समझ भी नहीं आया, लेकिन सालों बाद वही छोटा सा धक्का किसी की पूरी दिशा बदल गया।

साल बाद अभय एक स्कूल में बच्चों से मिलने गया। वहाँ एक लड़का था जो लगातार पीछे बैठा रहता था। नोटबुक अक्सर खाली रहती थी और उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। सब उसे एक कमजोर स्टूडेंट कहते थे, पर जब अभय ने उसे देखा तो उसे अपने भीतर का वो पुराना छोटा अभय दिखाई दिया। वो लड़के के पास गया, उसकी नोटबुक खोली, कुछ देर पन्ने देखे, फिर लाल पेन उठाया। लेकिन उस पेन ने किसी गलती को नहीं घेरा, बल्कि उसने लिखा, तुम्हारे जवाब गलत कम हैं, अधूरे ज्यादा हैं। लड़के ने उसे देखा और अभय उसे देखकर मुस्कुराया और उस पल उसे लगा कि शायद संदीप सर कहीं नहीं गए। अच्छे टीचर्स कभी पूरी तरह जाते ही नहीं हैं, वो तो अपने स्टूडेंट्स के व्यवहार में रह जाते हैं, उसकी सोच में, उसके फैसलों में, उसके शब्दों में और सबसे ज्यादा उन लोगों में जिनकी जिंदगी को उनके स्टूडेंट्स आगे जाकर बेहतर बनाते हैं। अभय आज भी अपने कमरे में संदीप सर की वो पुरानी लाल पेन रखता है। पेन अब चलता नहीं क्योंकि उसकी स्याही अब सूख चुकी है, लेकिन अभय उसे फेंकता भी नहीं है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक पेन नहीं बल्कि याद है उस इंसान की जिसने उसे ये सिखाया कि किसी बच्चे को बदलने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस उसे ध्यान से सुन लेना ही काफी होता है, कभी उसकी छोटी सी कोशिश पर भरोसा कर लेना काफी होता है और कभी कभी उसके गिरने पर उसे ये याद दिला देना काफी होता है कि गिरना और हार जाना एक बात नहीं है, और कभी कभी सिर्फ इतना कह देना काफी होता है, मुझे तुम पर भरोसा है। क्योंकि टीचर सिर्फ वो नहीं होता जो एक चैप्टर पूरा कर दे, टीचर तो वो होता है जो किसी बच्चे के अंदर अधूरी पड़ी किसी कहानी को पहचान कर उसे पूरा कर दे, जो उसे उसके डर से थोड़ा आगे ले जाए, जो उसके अंदर वो विश्वास पैदा करे जो उसे अपने घर में भी किसी ने नहीं दिया। और शायद पढ़ाई की सबसे खूबसूरत परिभाषा भी तो यही है, एक अच्छा टीचर आपके हाथ में सफलता नहीं देता, वो तो आपके अंदर ये विश्वास पैदा करता है कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हैं। और इस मोड़ पर मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन संदीप सर जैसे टीचर्स कभी खत्म नहीं होते। ऐसे टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स में जिंदा रहते हैं, जो किसी दिन किसी दूसरे बच्चे से कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। आपकी जिंदगी में भी होगा एक ऐसा ही टीचर जिसे आज आप पूरे दिल से याद कर रहे होंगे, तो चलिए उन्हीं टीचर्स के नाम आज की कहानी और ये गाना। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगली मुलाकात तक अलविदा।

0: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
1: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
0: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
0: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
1: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
0: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
1: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए।
2: अलंकित इमेजिनेशंस लिमिटेड,
1: विश्वास का नाम विकास का साथी।
3: शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: यू महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती है।

0: इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
3: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
4: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ਦੀ
1: ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी।

0: दिखती है, इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचें, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शर्मा में बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: हाल कैसा है जनाब का,
5: क्या ख्याल है आपका,
4: तुम तो मचल गए.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं।
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना।
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: जरा आप मुस्कुराइए, जरा आप मुस्कुराइए,
1: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
2: तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
1: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सह तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता।